नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन में किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय थोड़ी ही देर में 6 बजने को हो जाएंगे और थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

Sientan. रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि निष्काम कर्म, दया और सात्विक भाव से किए गए कर्म, विशेषकर विद्यादान और अन्नदान, यदि निष्काम भाव से किए जाएं, तो वे ईश्वर प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। और अब झरोखा के अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड का भाग 319वां। संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 7। कलाकार गायक पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली।

सात बजे भूले बिसर गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर और दोपहर 2 बजे त्रिवेणी आलेख और स्वर मंजरी वर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। पर चित्रलोक सुबह 9:30 पर और रात्रि इसी समय पर सुने आज के फनकार जो केंद्रित है अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुने डॉक्टर अजीत मिश्र न्यूरोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सुने सखी सहेली, 4 बजे पिटारा के अंतर्गत

सेलुलाइट के सितारे, अभिनेता अनंत महादेवन से नीता बाजपेयी की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित, 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर तराने नए पुराने का शेष भाग, 6:30 पर झरोखा, 6:45 पर संध्या रंजन, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष पॉप एक्सप्रेस, रात 8 बजे हवा महल में प्रहसन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी, लेखन अजय भारती, निर्देशक मुख्तार अहमद। 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या।

ये थे दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस लंका कांड का भाग 319वां, आज आप सुनेंगे।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। अंगद और हनुमान ने रावण के किले में घुसकर राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल समुद्र मंथन कर रहे हों। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्धभूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा। उन्होंने अग्निवाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि इन दिनों संगीत सरिता कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत की इन दो शैलियों पर संगीत श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। अब तक आप ख्याल के विषय में सुन रहे थे, आज से तराने को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। प्रस्तुत श्रृंखला के अंतर्गत राग मेघ में ख्याल की बंदिश और तराने पर सोदाहरण जानकारी दी है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। कभी कभार क्या होता है कि ख्याल की रचना और उसके भावों का राग से कोई मेलजोल नहीं होता। इस दशा में बंदिश और राग में ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है, इसलिए गायक व रचनाकार को गहरा अनुभव होना चाहिए। तो सुनिए राग मेघ में मेरी स्वरचित यह बंदिश, जिसमें राग और प्रकृति का

वैसे तराना का शौक मुझे शुरू से रहा है। तराना भी गायकी का महत्वपूर्ण अंग है। इस बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। राग मेघ का तराना गालिबन आमिर खान साहब द्वारा कंपोज किया गया है, जिसे मैं आपके सामने एक ताल में गाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

0: राग मेघ में तराने के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप जानते ही हैं कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आपने इसकी 7वीं कड़ी सुनी। सोदाहरण प्रस्तुति प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज की थी। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगति की और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने साथ दिया। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए ख्याल और तराने की विशेषताएं शीर्षक श्रृंखला का 8वां भाग।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत से।

0: अभी आपने सुना बरखा फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गीत के बोल कैफी आजमी, धुन बनाई हेमंत कुमार ने। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये गाना।

0: अभी आपने सुना प्रतिभा वल्लभ फिल्म का गाना, स्वर दिया अमीर बाई ने, गीतकार पंडित सुदर्शन, संगीत दिया रफी गजनवी और सरस्वती देवी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना था दीवानी हूँ फिल्म, दीवानी हूँ गाना फिल्म अमर ज्योति का, आवाज़ें लता मंगेशकर के, गीतकार भरत व्यास, संगीत दिया वसंत देसाई ने। और आइए अब सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत।
1: वो दिल की

0: अभी आपने सुना सिंगार फिल्म का गाना आवाज सुरैया की, गीतकार डी एन महदोक, संगीतकार खुर्शीद अनवर।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना अनजान फिल्म का गाना, स्वर दिया हेमंत कुमार ने, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

अभी आपने सुना सीआईडी फिल्म का गाना, आवाज़ गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और धुन बनाई ओपी नैयर ने। इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

फिल्म सीआईडी का ये गीत आपने सुना, आवाजें आशा भोसले, महेंद्र कपूर, कमल बारोट की और गीतकार अजीज कश्मीरी, संगीतकार ओपी नैयर। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

0: हम तो तेरे आशिक हैं, ये गाना फिल्म फर्ज का आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत रचना आनंद बख्शी, संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं एक अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं अगला गाना।

हमराज फिल्म का ये गीत आपने सुना गायक महेंद्र कपूर, आशा भोसले, गीत रचना साहिल लुधियानवी की और संगीतकार रवि।

हरे कांच की चूड़ियां, इस फिल्म का गीत आपने सुना आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जय किशन। इसी के साथ हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही देर में समाचार होंगे, 8 बजने में कुछ ही समय है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और

0: देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
1: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
5: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
6: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेकडाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाए।
5: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
7: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे।
5: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
8: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहनें भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक

0: शीर्षक से दिया है। 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ। 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक। भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी अजनबी शब्द पर आधारित है। हम, आप या कोई भी हो, जब पहली बार मिलते हैं तो अजनबी ही होते हैं। कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुलाकातें होती हैं, तो अजनबी काफी हद तक नहीं रहते। लेकिन किसी सफर पर निकले हों, अचानक मुसीबतों से घिर जाएं, तो ऐसे में कोई अजनबी सा शख्स आकर मदद कर जाए और बिना कुछ कहे वो चला जाए, तो आंखें तलाशती हैं उस अजनबी को। कौन था, कहां से आया था, इतनी हड़बड़ी में नाम भी नहीं पूछ पाई। तब दिल को बड़ा अफसोस होता है। रह रह कर वो अजनबी अक्सर स्मृतियों में उभर आता है।

हमारा रिश्ता नहीं होता, फिर भी वे दिल के बहुत करीब लगने लगते हैं। ना नाम का बंधन, ना पहचान का दावा, बस एक अनकहा अपनापन। कई बार ये अजनबी अपनों से ज्यादा हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पहली बार मिले, पहली बातचीत, पहली मुस्कान, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत सा बन जाता है। जब हमारे अपने हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं वो एक अजनबी हमारी आंखों का दर्द पढ़ लेता है, हमारी खामोशी महसूस कर लेता है। तब महसूस होता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। वही कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।

अजनबी सी मुलाकात, वो सफर पर मिली किसी की दुआ, बस में किसी अनजान बच्चे की मासूम मुस्कान, रास्ते में सड़क पार करते समय गिरने पर किसी अनजान का सहारा, या किसी का पूछना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो हैं? और जब किसी अजनबी से मुलाकात अचानक दिल में प्यार का एहसास घोल दे, उससे बार बार मिलने को मन करे, एक रिश्ता सा जुड़ने लगे, तब वो अजनबी लगता है हमारे सुख दुख का, खुशियों को बांटकर जीवन भर साथ चलता रहे, हम सफर बनकर कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें उन्हीं से मिलती है जो कुछ देर के लिए हमारी दुनिया में आते हैं और हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपके साथ आज मैं हूँ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गणेश वंदना के साथ, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा है। श्रेयस पुराणिक और जैकी वंजारी का संगीत।

इस गणेश आरती के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत पुष्पा द राइज पार्ट वन से। इस गीत को गाया है जावेद अली ने, रकीब आलम ने इसे लिखा है, देवी श्री प्रसाद का संगीत।

हम दो हमारे दो इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं जुबीन नौटियाल, दिव्या कुमार और सचिन जिगर की आवाजों में। शैली ने इसे लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, आज जल विश्व दिवस है। शरद विश्व वो समय है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ये शरद ऋतु के आगमन का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में इसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। प्रकृति में मौसम के बदलाव की सुंदर छटा दिखाई देने लगती है। पेड़ों की पत्तियां हरे से पीले, नारंगी और लाल रंग में बदलने लगती हैं। वातावरण में हल्की ठंडक और सुहावनापन महसूस होने लगता है। शरद ऋतु को संतुलन, परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्रम वेधा, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है विशाल शेखर और शेखर राव जियानी ने। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: थैंक गॉड, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग, डुलन आर्क्स और मेलोडी ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और चमत संगीत का।

लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने। ये पारंपरिक रचना है जिसे संगीत से सजाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्यमेव जयते 2 इस फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी हैं जहरा एस खान और जस मानक ने। तनिष्क बागची और जस मानक का गीत संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज।
3: जनसेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
4: नमस्कार। जनसेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
5: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में MyGov ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक MyGov पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
4: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश।

0: सुरेश जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
1: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
0: जी, जी।
1: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
0: जी।
1: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
0: जी।
1: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे उस मुहिम के, वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा।
0: जी, जी।
1: तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई, आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के जमाने में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
0: बिल्कुल।
1: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य से। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
0: जी,
1: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में, एक योजनाओं में, एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: श्रोताओ, यहां पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख मैं याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहां पर सुरेश जी हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया?
1: बिल्कुल। देखिए, याद रखिए, आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
0: जी,
1: 2 अक्टूबर
0: जी।
1: और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होकर हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे एक एक शहर का। अब देखिए, इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहां सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में, लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है।
0: जी।
1: तो मैं समझता हूं कि एक जागरूकता जनता के अंदर पैदा भी हुई है।

0: कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं तो। इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
1: देखिए, आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि वीडियो कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना एलपीजी गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो पीएनजी के इस दौर में मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, जहां भी घर घर पीएनजी की पाइप बिछ गई है और लोग पीएनजी का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता भी, सहजता भी आई है और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी वहां से आजादी मिले, कि सेहत सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है और जिसका परिणाम यह है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
2: सुरेश जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना, जो खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था
0: जी,
2: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक एलपीजी की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा पीएनजी के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है कनेक्शन मिल गए, जिसके बाद एलपीजी की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
0: बिल्कुल।
2: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए
0: जी।
2: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था
0: जी,
2: हम एडिशनल भी हमने एक ले लिया था क्योंकि कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से पीएनजी आया, घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा
0: जी, जी,
2: तब जाके जो है ये होगा
0: जी, जी।
2: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था
0: जी।
2: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि पीडीएस की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं
0: जी, जी, जी,
2: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है उनको भी देना

0: करना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
1: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूं मन की बात कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में
1: जी।
0: तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
1: बिल्कुल
0: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों के उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे, अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर हमने इसका पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस किया
1: जी।
0: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आम तौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
1: जी,
0: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन, वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूं न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूं कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
1: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु, उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है?
2: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री की जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। यह सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है, या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय, कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से, लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
1: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
0: देखिए, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
1: जी।
0: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
1: जी, जी,
0: आज
1: जी।
0: जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू
1: जी,
0: करेंगे
1: जी, जी,
0: दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सीहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है, इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से, इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है। आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
1: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था, यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
0: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
1: जी,
0: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
1: जी,
0: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति है उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको
1: बिल्कुल।
0: मान्यता देना,
1: हुँ।
0: उनका

0: जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी, आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपुल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है। और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहां जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक, वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे?
0: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
1: एक किया पूरे भारत
0: वर्ष, पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
1: बिल्कुल,
0: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और
1: सांस्कृतिक
0: एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल की प्रति जो है देते हैं, पहले वो भगवद गीता दिया करते थे, तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
1: लोग जीवन में
0: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग देश के, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग जाति धर्म से जुड़े हुए लोग, लेकिन मूलतः उन सबका जो है वो भारतीयता उनमें है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, सांस्कृतिक एकता की जो बात है, वो मैं समझता हूं कि उसको स्थापित करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बहुत बड़ा, अलग अलग पार्टनर स्टेट्स बनाए गए हैं के तहत जो है, अलग अलग राज्यों में आपस में समन्वय बना हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करके। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्वीकार्यता, ये राष्ट्रीय एकता का और मजबूत होने का एक प्रतीक है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में ये दूरियां कम होगी, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो, ये बहुत जरूरी है, और उसी के तहत मैं समझता हूं कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
1: अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, भारत विकसित हो ये हम सब की कामना, इस विकसित भारत में लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है, और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी, कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया, और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है, और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है, उसका निश्चित ही कारण।
1: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KG सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता

अपने 50 साल के करियर में दुर्गा खोटे ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया है। वो हिंदी और मराठी की फिल्मों में तो लगातार काम करती रहीं। उनकी चर्चित फिल्मों में से कुछ हैं मुसाफिर, राजतिलक, मिर्जा गालिब, मुगले आजम, लव इन शिमला, अनुपमा, दादी माँ, फिल्म आनंद और बावर्ची में भी वो नजर आती हैं। फिल्म बॉबी और नमक हराम में भी, सुभाष घई की फिल्म कर्ज में भी उन्होंने काम किया था। वैसे आपको ये बता दें कि दुर्गा खोटे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से भी जुड़ी रहीं और बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर और के ए अब्बास जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया।

0: मुझे गाने का शौक था ही, और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
1: अच्छा, विदेश भी गई हूँ?
0: हाँ, मैं 2-3 दफ़े विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआई, और हर जगह से कुछ ना कुछ नया चीज़ इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज़्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफ़ी समय भी इसमें डाला।
2: शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के मराठी संस्करण में काम किया था और लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई थी। इस संस्करण में नाटक का नाम था राजमुकुट। आगे चलकर दुर्गा खोटे ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। वैसे दूरदर्शन पर आने वाला मशहूर सीरियल वागले की दुनिया तो आपने देखा ही होगा। इस धारावाहिक का प्रोडक्शन दुर्गा खोटे की कंपनी ने ही किया था। सन 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से और सन 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म साहेब बहादुर सन 1977 में आई थी। इस फिल्म में भी दुर्गा खोटे नजर आई थीं। गुलजार की फिल्म खुशबू सन 1975, इस फिल्म में दुर्गा वृंदावन की माँ की भूमिका में थीं। 1974 में दुर्गा खोटे ने फिल्म बिदाई में पार्वती का किरदार निभाया और इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार।

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान याद है, दुर्गा खोटे ने दुर्गा मौसी का किरदार निभाया था। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उन फिल्मों के गाने जिनमें दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था, जैसे एक फूल दो माली सन 1969, संघर्ष सन 1968, अनुपमा सन 1966। सितंबर 1991 को 86 बरस की उम्र में दुर्गा खोटे इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। रह गईं उनकी निभाई कुछ भूमिकाएं और उनकी हंसमुख पर्सनैलिटी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन,

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो

0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज़ इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुँचेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए। और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है ब्रेन में, खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलते हैं, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, आंसर इज यस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं
1: जी।
2: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं
1: जी।
2: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे अस्पताल ज्यादा हो

0: सिटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज़्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफ़ी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए
0: करेक्ट, अच्छी
1: हैं।
0: है, बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको। फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं बिल्कुल,
0: करेक्ट करेक्ट, तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक
1: जिस
0: ही
1: पर?
0: कारण नहीं है बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रक्त दाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का,
1: जी
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी जी
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: जी
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी। पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं।
1: ओहो
0: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो
1: जी
0: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जो स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
1: ठीक है।
0: रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को
1: ओ
0: इम्पैक्ट करता है। तो
1: जी
0: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश
0: स्ट्रोक
1: प्रयास किया जा सकता है ठीक करने का?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
1: ओ
0: में मोच आ गई,
1: जी जी
0: उसके कारण
1: जी
0: मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरीफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर

0: तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास, वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो।
1: जी
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफ़ी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो
1: ओके
0: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते
1: जी।
0: हैं।
1: तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज
0: करेक्ट,
1: होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध
0: खून
1: है?
0: अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो
1: ओ
0: जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो, हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयाँ, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
1: जी जी
0: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे हैं, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
1: जी जी तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है? मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए या
0: ये एक
1: बिल्कुल नहीं?
0: मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफ़ी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज़ है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना।
1: ओहो
0: क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और
1: ओहो
0: दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
1: जी
0: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
1: जी जी
0: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: ओके
0: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना।
1: जी
0: द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूँ। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल। और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है
0: तो
1: ना?
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए,
1: जी जी
0: उससे
1: जी
0: भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए। क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो
1: जी
0: एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, वो ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए। बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: पसंद का, अब मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया की, बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम,
1: जी,
0: वो
1: SP
0: सुनना चाहूंगा।
1: बालासुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो
0: जी
1: उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना 2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना 2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: सबसे
0: की?
1: सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं फैमिलीज, काफ़ी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज़ 2 अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही
0: था।
1: बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
0: जी,
1: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए।
1: करेक्ट, तो वो जो एक
0: ये
1: मिथ
0: जो
1: है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ
0: हाँ,
1: था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए।
0: हाँ,
1: तो जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं,
0: जी
1: बट
0: जी
1: जब भी

0: एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है। इट इज अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ यू ईयर्स, दो
1: जी
0: साल 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू।
1: जी
0: दो
1: जी
0: सार एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है। मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग, किडनी, लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए। अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो,
1: बिल्कुल।
0: ऐसा।
1: और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा, एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं आई थिंक। अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।

0: जी
1: तो उसका
0: तो
1: हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है तो नेट पे उसका एक इलाज भी
0: दवा
1: अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए
0: हाँ
1: ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ
1: है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफी बार हम पेशेंट देखते हैं कुछ बेसिक दवाइयां लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई भेजने से दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
0: जी
1: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे हैं, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
0: जी
1: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए, तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: जी
1: अदरवाइज अभी भी ऐसा है 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं।
0: जी
1: और दवाइयां ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े, कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयां जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज्यादा मैनेज कर रहे हैं उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं,
0: जी
1: और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
0: जी जी
1: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी सिरदर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह
1: करेक्ट,
0: से भी होता
1: एग्जैक्टली
0: है?
1: जैसे मैंने बताया, चश्मा,
0: हाँ
1: नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हुई, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल
0: जी
1: करवाना
0: जी
1: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से भी
1: तो
0: सिरदर्द होता है?
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल
0: ओ
1: वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी
0: हाँ
1: बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: दिक्कत है पेट की, पेट में
0: हाँ
1: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
0: जी जी
1: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: जी
1: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
0: जी
1: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
0: जी
1: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोज कर सको,
0: जी जी
1: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
0: जी
1: इन्फेक्शन हो सकता है,
0: भाप ले लो
1: तो वो थोड़ा
0: और
1: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो
0: जी
1: पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
0: जी
1: दैट इज अ
0: जी
1: हाफ इन्फॉर्मेशन,
0: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
1: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ मैं
0: गया है
1: उनको।
0: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम,
1: करेक्ट
0: तो इसलिए
1: करेक्ट
0: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
1: करेक्ट
0: डॉक्टर
1: करेक्ट
0: से
1: करेक्ट
0: संपर्क
1: करेक्ट
0: कर
1: तो
0: लें
1: वो जो
0: और
1: 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके। जैसे
0: जी
1: ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है, तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच
0: ओ
1: कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए
0: जी
1: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
0: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एब्सेंट माइंड होना याददाश्त पर असर पड़ता है?
1: किस स्टेज पे आते हैं, काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है,

0: तो ओवरऑल ICMR जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है, इसको हम अभी भी रोका जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो, पर उनके जो चलने का पैटर्न है, डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहा है, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
1: अच्छा
0: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें
0: करेक्ट।
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में है
0: जी
1: ये गाना।
0: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है ये?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज़ हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है,
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन जिससे

0: क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है।
1: ओ
0: तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी
1: कैंसर
0: तो
1: है।
0: मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो वो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत ये है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिरदर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे, तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
1: जी।
0: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और
0: देखिए जैसे
1: अचानक?
0: ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। नॉन
1: दबे
0: स्पेसिफिक
1: पांव आने
0: मतलब
1: वाली बीमारी।
0: करेक्ट, तो काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब तो ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी
1: जी
0: में, वहाँ MRI छोटे आपको न्यूरो के पास पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता है,
1: जी
0: तो हर
1: जी
0: एक का MRI करना मुश्किल होता है।
1: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं
0: ऐसे
1: जिससे?
0: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो एक ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी। तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई, क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो हमारे देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे श्रोताओं को ना पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है
0: हाँ,
1: जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी।
1: तो अगर वो मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन। तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोज करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए
1: तो
0: हमें?
1: बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी जो हम बोलते हैं, 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना, खाना, बाहर की लाइफ एक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।

0: रक्त फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
1: एक
0: जरूरी
1: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने एमआरआई किया, पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे, एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए।
0: जी
1: बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तो
0: जी
1: दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है
0: जी
1: वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो
0: जी
1: उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का।
0: जी जी
1: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
0: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
1: करेक्ट करेक्ट,
0: तो उसके क्या लक्षण है?
1: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं,
0: ट्यूमर
1: गांठ।
0: वही
1: तो
0: है
1: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
0: जी।
1: जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए, कुछ भी
0: हाँ
1: हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
0: जी। तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है, कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
1: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है।
0: और
1: तो
0: फिर
1: उसके
0: इसका
1: हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम
0: जी
1: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
1: ऐसा
0: है?
1: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
0: जी
1: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता।
0: जी
1: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लगा आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
0: जी। तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह की डाइट?
1: स्ट्रोक,
0: जो
1: यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
0: जी। और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
1: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिन्जियोमा, तो वो
0: जी
1: सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज ले सकता है।
0: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
1: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी
1: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज, बीपी,

0: का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप
1: जी
0: जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक
1: जी
0: बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीजें, नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों
1: बिल्कुल
0: में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे हैं और
0: करेक्ट
1: नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट।
1: बहुत फायदेमंद बात है ये।
0: तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
1: जी
0: सारे छोटे सिटी में भी काफी सस्ते में मिल जाते हैं,
1: जी
0: बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया, और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है, तो
0: तो
1: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए, जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है। तो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो, जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय, नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी वन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयाँ इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है,
0: करेक्ट, उस
1: तो ये क्या कोई न्यूरो
0: न्यूरो रिलेटेड
1: प्रॉब्लम?
0: ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है, तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम।

0: तो
1: जी
0: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलता है फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं, हम
1: जी जी
0: फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर्स या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं,
1: जी
0: बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू। तो
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे,
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम चंदा की डोली से ये गाना, जिसे गाया सोनू निगम ने। गीत रचना नुसरत बदर की और संगीत सोनू निगम का। रंग तरंग कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

मेड इन इंडिया एल्बम का ये गीत आपने सुना, आवाज अलीशा चिनॉय की, गीतकार अलीशा चिनॉय, बिद्दू श्याम अनुरागी और संगीत दिया बिद्दू ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अगली आवाज चंदन दास की है, इनकी गजल आप सुनिए, शायर मुराद लखनवी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला गाना।

अभी आपने सुना दिल पड़ोसी है इस एल्बम का गीत आशा भोसले की आवाज में, गीत गुलजार का, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुने अगला गाना।

अभी आपने सुना पिया बसंती एल्बम का ये गाना, आवाज उस्ताद सुल्तान खान की और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल का। और सुनिए अब ये अगला गाना।

0: अभी आपने सुना त्रिकोण का चौथा कोण, छाया गांगुली की आवाज़, छाया गांगुली की आवाज़, गीत रचना महादेवी वर्मा की, संगीत जयदेव का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओ, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे, 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओ, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
2: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
0: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
2: जी,
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
2: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
2: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
2: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशुताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
2: जी,
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
2: बिल्कुल,
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
2: जी,
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
2: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
2: जी,
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
2: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही लेकिन अब
2: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
2: जी,
0: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
2: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
3: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
3: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
3: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India, brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोए

0: के दिमाग में सपने की बात ही बार-बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
1: अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो,
2: आए उठो,
1: अरे उठो,
3: बैग बैग के पैक, बैग बैग।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
1: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
4: अच्छा।
1: परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
5: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन गया।

0: नौकर चाकर थे, मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम।

0: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
2: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
3: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
4: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ,
2: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
2: खीर खाए तुम?
0: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
3: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
2: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों

0: नहीं जगाया। जगाता कैसे? तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
1: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

शीरा पन्ना फिल्म का गीत था और अब आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है पुकार, गीत गुलशन बाबरा का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और आज का जो टेक्स्ट है वो पोस्ट हो चुका है। अब सभी जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर आते हैं वो सभी उस टेक्स्ट से वाकिफ हैं, पर अपने उन श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना,

0: अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो? नहीं, मैंने 80s के गाने सुने।
1: अच्छा, ऐसा?
0: हाँ ऐसा। क्या सुना बताओ तो जरा। अरे सीधा सीधा बताया तो क्या बताया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम भी उसी तरह से इशारे में जवाब देना। मंजूर? हाँ चलो हो जाए। अब लड़का कहता है, हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाएंग। तुम हो बुद्धू जान लो, यू आर हैंडसम मान लो। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। अरे इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह नहले पे दहला, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया। ऐसा तो फूलों के शहर में हो घर अपना, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ओह इतना दर्द, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। ये कहां आ गए हम, कितना मजा आया ना इस खेल में। ऑफ कोर्स, तो भाई ये है आज की इबारत, और जाहिर है कि इस इबारत के जरिए आपको अंदाजा लग गया है कि गाने कौन से हैं। पर इन गानों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम 80s के दौर को, उस दौर की जिंदगी को, उस दौर के जज्बात को याद करेंगे। तो भाई अपने मोबाइल फोन पर जाइए, फेसबुक पर पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी जल्दी ये लिखना शुरू कीजिए कि 80s के दौर में आप कहां थे, आपकी क्या उम्र थी, और उस दौर से जुड़ी हुई यादें कौन कौन सी हैं आपकी। इन गानों के जरिए हम सीधे 80s के दौर में पहुंच जाएंगे, और बस ये समझ लीजिए कि उन सुनहरी यादों के गलियारों में से गुजरेंगे जब जिंदगी जिंदगी होती थी, जब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की रीलें नहीं होती थी, जब जज्बात हुआ करते थे और जब यूं कहा जाता था आई लव यू। एटीज के दौर के कौन कौन से खेल आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेला करते थे, और इस गाने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी।

भाई कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। श्रोता लिखते हैं कि 79 में तो मेरा जन्म हुआ था, 80 के दशक में मैं बच्चा था और उसके बाद उन्होंने 90s की कुछ फिल्मों को याद किया है। अर्ली 90s की करमाना की नाराम लखन, प्यार झुकता नहीं एक दूजे के लिए, कभी 90s की सैर भी करेंगे इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तेरे बिन मर जाना कॉलेज में तहलका मचा दिया था इस गाने ने, किसी को प्रेम का इजहार करने या छेड़ने के लिए मनपसंद गाना था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दौर में स्कूल में पढ़ रही थी, तीन खेल तब बहुत लोकप्रिय थे, कबड्डी, खो खो और छुपम छुपाई। क्या याद दिलाया, छुपम छुपाई कितने लोगों को याद है। और छुपम छुपाई में ऐसी ऐसी जगह छिप जाते थे कि कहीं मकड़ी के जाले लग जाते थे तो कहीं कुछ हो जाता था, ये भी याद कीजिएगा। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। इस बीच में एक सुंदर खबर हमारे एक श्रोता ने भेजी है और कहते हैं कि भारत की लड़कियां आज गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि भारत और श्रीलंका की लड़कियों का मैच चल रहा है, T20 मैच, पहली बार बहुत सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है एशियन गेम्स में। और भारत ने 20 ओवर में 216 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और श्रीलंका 7 विकेट उड़ चुके हैं, 11वां ओवर है, केवल 54 रन है। तो कुल मिलाकर ये संभावना जताई जा रही है कि आज भारत की लड़कियां जीत जाएंगी और भारत का एशियन गेम्स में इस बार का पहला गोल्ड मेडल हमारे पास आ जाएगा। तो जश्न मनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि अब बस 9 ओवर का खेल बाकी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ही ये खेल जो है खत्म हो जाएगा और भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत जाएंगी और जब तिरंगा लहराएगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ वापस लौटते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीला सफर सुनकर दोपहर की सारी थकान मिट जाती है, हम चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सिर्फ जीवन संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम ओपिंगो बैटिंगो खेल खेला करते थे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि खुद्दार फिल्म एक हफ्ते में 2 बार देखी थी, पहली बार 20 मिनट निकल चुकी थी इसलिए दूसरी बार फिर देखने के लिए गए थे, तब भी 20 मिनट, यानी शुरू की 20 मिनट इनकी हर बारी छूट गई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और बहुत सारे लड़के इस गाने को गुनगुनाया करते थे, रेडियो पर जब ये गाना बजता था तो बड़े चाव से सुना करते थे। एक और श्रोता है जो लिखती है कि वो कलकत्ता में थी, 27 साल की उम्र उस वक्त उनकी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 80 के दशक में नौकरी मिली थी और 80 के दशक में के अंत में शादी हो गई थी, पिछले 25 बरस उनकी उम्र थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। आज तो भाई 80 के दशक की सैर है सुरीला सफर कार्यक्रम में और जरा देखिए कि हम कहां पहुंच गए, किन यादों में। जब ये फिल्म आई थी सनी देओल और अमृता सिंह की अभिनय वाली, तो ये गाना जैसे सभी के होठों पर सज गया था। आपकी क्या यादें हैं इस दौर से जुड़ी हुई, जरा हमारे साथ बांटिए। न जाने कितने लोगों की प्रेम कहानियां परवान चढ़ी ये कहते हुए

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे, भाई ये कमेंट्स जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं, तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद है, एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे, पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोता है जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था, लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफर और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 12-13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यादें। देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है, सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी जिंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ, और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक, बड़े बड़े फ्लैश लाइट वाले कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मजेदार याद शेयर करते हैं, लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए 5 मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास 2-2 रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी आती है, और वो फिल्म जो है 1 महीने बाद देखने को मिली थी। बड़ी ही मजेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ

गाने नहीं बल्कि वो रस हैं, और इन गानों के बिना हमारी जिंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें एआई के जरिए बना रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 के दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे, लेकिन उस दशक की सादगी कहाँ से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुगढ़ता, वो जीवन का सुकून कहाँ से लाएंगे, जब संगीत में शोर कम और सुकून ज्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं है, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, माँ के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें। क्या इस गाने में इस गायक की आवाज आप जानते हैं, ये किसकी आवाज है जो नसीब इंसान का गा रहे हैं।

0: हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई।
1: क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला और ड्रम्स की आवाज, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे। आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊ जी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीजें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीजों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपने बात की है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे, अपनी पसंद के गाने सीडी में तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था, 80 का दशक अब कहां। विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज ही सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली, 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया है हमें। इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं। वो लिख रही हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूं उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं, 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल खत्म किया था और पुणे की एक कंपनी में

काम करना शुरू किया था, कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा घर में कागज की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

और शानदार खबर आ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 147 रनों से जीत हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां। विविध भारती परिवार की ओर से

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहाँ विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर यह गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूं और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता है जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहाँ होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी, ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे, फिल्म का ये गाना निदा फाजली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे निदा फाजली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफी, मनहर उदास और हेमलता तीन अलग अलग आवाजों में इस गाने के वर्जन हैं। संगीतकार उषा खन्ना हैं ये भी।

और इसके अलावा राज बब्बर पर फिल्माया गया दीपक पर अशर और रंजीता, ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियां इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं, गोरखपुर की जुबली टॉकीज में ये फिल्म देखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ की है एक फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहाँ पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी। शायद ये गाना हमने सबसे ज्यादा सुना है, इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था, तो सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लुड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, न मोबाइल न वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर, कहा गया वो दौर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी ही सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना सको। क्या मुकाबला था शक्ति अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और चार बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं। यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: भाई ये गाना भी खत्म हुआ। कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का ये अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुदा गवाह, इंकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में चल सकता हूँ, अंग्रेजी में हंस सकता हूँ, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ये बात एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमक हलाल, लावारिस, कुली, मर्द, शहंशाह, काला पत्थर, कालिया, नसीब, शराबी, सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है, और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोक कर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
2: क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए, जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देख कर लौट रहे थे। उनसे टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी। क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी। कितना इंतजार था लोगों को। कितनी बार देखी है ये फिल्म और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है, किसी ने लिखा है जीना तमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध और खून पसीना, ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतजार में थे लेकिन वक्त ने इजाजत ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का विकल स्वर कौन थे इस फिल्म के संगीतकार, ये बताइए। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी,

क्या बेमिसाल गाना और इस गाने की ये बांसुरी, कितने लोगों ने तो अपने मोबाइल में इसे रिंगटोन के रूप में रखा है। आज के इस कार्यक्रम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हर कार्यक्रम को खत्म तो करना ही होता है ना अपने नियत समय पर। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया, 80 के दशक की सैर पर ले गए। जो यादें हैं उन्हें जिंदा रखिएगा, बांटते रहिएगा और अपने जीवन में जज्बात को घोले रखिएगा, क्योंकि जज्बात हैं तो हम हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी अजनबी शब्द पर आधारित है। हम, आप या कोई भी हो, जब पहली बार मिलते हैं तो अजनबी ही होते हैं। कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुलाकातें होती हैं, तो अजनबी काफी हद तक नहीं रहते। लेकिन किसी सफर पर निकले हों, अचानक मुसीबतों से घिर जाएं, तो ऐसे में कोई अजनबी सा शख्स आकर मदद कर जाए और बिना कुछ कहे वो चला जाए, तो आंखें तलाशती हैं उस अजनबी को। कौन था, कहां से आया था, इतनी हड़बड़ी में नाम भी नहीं पूछ पाई। तब दिल को बड़ा अफसोस होता है। रह रह कर वो अजनबी अक्सर स्मृतियों में उभर आता है।

हमारा रिश्ता नहीं होता, फिर भी वे दिल के बहुत करीब लगने लगते हैं। न नाम का बंधन, न पहचान का दावा, बस एक अनकहा अपनापन। कई बार ये अजनबी अपनों से ज्यादा हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पहली बार मिले, पहली बातचीत, पहली मुस्कान, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत सा बन जाता है। जब हमारे अपने हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं वो एक अजनबी हमारी आंखों का दर्द पढ़ लेता है, हमारी खामोशी महसूस कर लेता है। तब महसूस होता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। वही कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है। उजाले उनकी यादों के उत्तम सिंह के साथ हर रविवार शाम 4 बजे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
6: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
7: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
6: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म

0: आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
2: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
3: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
2: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
5: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला

0: स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज टी20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल। फिल्म का नाम है वासना।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

शिकार फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार राहुल देवबर्मन। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं बता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
2: अच्छा।

0: लेकिन बस अब चलिए, आपने अब खुलासा कर ही दिया, हाँ राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं, भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं, अरे
1: कैसे जाओगी,
0: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फेहरिस्त, और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं, तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल
1: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं, तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते, पर जब
0: फिक्र में लगे रहते हैं एक दूसरे की,
1: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है, इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है, तो हर महिला को ही सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती हैं, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोजबीन नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत सारे रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
1: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए,
0: और साथ में सुना लीजिए उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती हैं लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: जी, साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत का होना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है, अगर बच्चों ने कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
0: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं, और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ,
1: और श्रोताओं ने ममता जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
0: अच्छा तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया क्या, वो सोलो ट्रिप वाली बात जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है, होगा तो अनुभव शायद छुपा भी रहे होंगे,
1: शायद लिखेंगे।
0: हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं छात्र हैं वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं परिवार के साथ नहीं,
1: उन्हें अच्छा लगता है।
0: तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं, और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है, तो आज का जो मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है, और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत के प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई, वो जुड़ गई वे, और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा, क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया है।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले
1: ममता
0: दिनों।
1: जी, मैंने पढ़ा है, सुना है और
0: हाँ
1: आपके बारे में भी पढ़ा है, और
0: हाँ
1: मैं भी सोच रही
0: विचार
1: हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की।
1: पर मन में
0: लेकिन
1: बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियाँ बटोर कर ले आते हैं। जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं, और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है
1: जी
0: आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी
1: जी
0: दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहां लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं। तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है। पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं।
1: जी
0: आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना
1: पुरुष
0: चाहिए?
1: तो जाते ही हैं ममता जी।
0: बिल्कुल,
1: भले ही वे
0: महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती
1: जी
0: रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है। फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी
1: जी
0: सुविधाएं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां
0: फिर
1: महिलाओं का
0: हुजूम
1: ग्रुप
0: मिल
1: मिल
0: जाता
1: जाता
0: है,
1: है। जी
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है।
1: जी
0: लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको, उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते
1: यानी
0: हैं।
1: बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है। हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा। बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बेंगलोर हैदराबाद का

0: घूमने के लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
1: और आप निडर बनते हैं इसी बहाने। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहाँ तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही है तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं छोड़ने आते हैं और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही है जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है सुरक्षा मिल जाती है लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है। बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं। ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए क्योंकि अब आगे समय आपका आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहाँ आप आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहाँ नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
0: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा ममता जी कि भले आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहाँ तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है।
1: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली। और सोनाली जी, देखिए एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं, और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ। जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथी कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी, हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले, वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है
1: जी,
0: तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि मैं अकेली आई हूँ वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है। कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है। क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भागदौड़ की जिंदगी में, आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, अपने आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या

0: बुराइयां हैं और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती
1: और
0: है।
1: एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकती, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
0: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोना लीजिए हम भी सोलो
1: सोलो
0: ट्रिप
1: ट्रिप
0: पर,
1: पे
0: फिलहाल इस
1: दोनों मिलके सोलो ट्रिप
0: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका
0: तो
1: सफर
0: उनके लिए
1: सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए, जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे।

0: और उसी रात वहां पर हादसा हो गया। तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे और हमारा उसे उस समय टाइम उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाएं, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दें। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आप किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता जी?
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ खुश रहो, यही आशीर्वाद दे देना चाहिए। जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे कहा आपको मैं कहां से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है। मेरी एक छात्रा की बातें हैं, कह रही थी, वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़े थे और एक हम उम्र लड़का आकर बोला आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं। हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कह के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है। हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है। जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करती हैं। इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने कहा मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ, मैंने कहा तुम लोगों ने 2 ही शब्द सीखे अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में चाची मामी बुआ फूफी ताई इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई काफी उम्र का हो चुका है, मामी बुआ फूफी ताई चाची किसी भी उम्र की हो सकती है, हाँ मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
0: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो बुआ हो और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माता जी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माता जी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहाँ माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल है, कुछ स्कूल में भी विद्यालय

0: में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
1: वही
0: तो ये
1: दीदी ताई भैया कहे इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को
0: हाँ,
1: बुरा लगता है।
0: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा
1: एक
0: लगता
1: साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्रदराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है। उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस बारे में क्या
0: बिल्कुल।
1: कहेंगे?
0: अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने की बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
1: एक
0: और
1: साथी ने कहा है मुझे भी ऐतराज है कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ हम आंटी उम्र के हो गए हैं पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें
0: अब एक
1: कहें।
0: श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व तो और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते
1: अरे ये
0: हैं।
1: अंकल कहाँ दिख रहा
0: हाँ? और
1: हूँ।
0: खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं
1: हाँ तो बड़ा बुरा लगे।
0: तो कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल
1: अंकल कह
0: कहती हैं।
1: रहे
0: तो बात तो वही हो गई,
1: थी।
0: अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना
1: ठीक
0: सुनवा
1: सुनते
0: दें।
1: हुँ।

0: अब ये आंटी ना कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बैंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
1: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूँ तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई, और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया। तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम
1: दीदी।
0: उत्तर प्रदेश या
1: हाँ
0: एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार
1: जी,
0: में ताई मतलब
1: चाची, बड़ी
0: चाची,
1: माँ।
0: मतलब बड़ी बड़ी माँ
1: हाँ,
0: एक तरह से, मतलब जो जो चाची
1: माँ की
0: हैं,
1: जेठानी।
0: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि
1: दीदी तो
0: ताई
1: इतनी
0: किस
1: बड़ी
0: रिश्ते से
1: दिख
0: कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है।
1: रही।
0: तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही है, मेरा आपका क्या नाता है। तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहां का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहां के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे
0: और
1: साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूं तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूं, पर फिर सोचता हूं कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी हैं, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी हैं, हमारी एक पड़ोसी हैं जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में 2 गुना 3 गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था, और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा। और
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाये। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है, इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाये। इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे। पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते
0: अब तो
1: हैं।
0: एक गूगल नाम का जो
1: हाँ
0: प्राणी है
1: हाँ
0: आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई
1: मुझे तो ऐसा
0: देती
1: लगता
0: है
1: है कभी कभी ये हमारे
0: सुनते
1: मन का
0: में।
1: भी जान लेता है क्या,
0: बिल्कुल,
1: मैंने मन में कभी सोचा
0: क्योंकि
1: है तो उसी की ऐड आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं,
1: हाँ,
0: डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो
1: वो
0: बात को चली
1: शब्द,
0: जाती है, शब्द
1: वो
0: पकड़
1: शब्द
0: लेता है।
1: पकड़ लिया तो उसी की आती। एक
0: कई
1: और
0: बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ, तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भलीभांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे, सरकार जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने।
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बायनोक्युलर्स लिए, और उस बायनोक्युलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है, और अब भी मैं सपना देखता हूं कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं, और उतना अच्छा बनूं जितना आप।

0: उन्हें मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और
0: जी
1: उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े,
0: जी
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है।
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहाँ ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत है और रोल मांगने की ज़रूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के ज़माने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो दो तीन ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगा, और ऐसी कहानियाँ सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहाँ से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीचों बीच में हूँ इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूँ जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं। तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच में हूं इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे, और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब अडेप्टेड प्लेज हैं। और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशन है, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहां चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपीए है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए, और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूँगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से, और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी, क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी, वहां आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया। और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर। और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं
1: बार बार
0: आते।
1: नहीं आते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कई स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्टर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें। पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा।
1: जी
0: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
1: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको।
0: जी
1: अगर आप कहेंगे कि फिल्में, फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
0: अच्छा,
1: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
0: बहुत खूबसूरत बात है।
1: फिल्म जो है हमको बढ़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की। जो किरदार है बहुत ही रियल है, जिंदगी के करीब है, फिल्मों के करीब नहीं। तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए कि आपको उसी तरह से बोलना है। आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
0: अच्छा,
1: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से। लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
0: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
1: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए। तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
0: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा, या आपको लगा रहे मैं कहां फंस गया?
1: नहीं, फंसे तो वो थे ना। अच्छा। जो दूसरे कैरेक्टर थे, मजा तो बहुत आया, क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो हाँ। उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है, और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
0: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
1: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
0: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: लेखक लिखते हैं, वो राइटर मानिए, तो आप अपने हाथ बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
0: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पिन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
1: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
0: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी, और उस वक्त हम दिल्ली में थे। और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त। शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई उस वक्त, एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बंबई में है हम।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिदा ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट

0: लोग बनाते थे। ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थे सीरियल। और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके, जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो हैं वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है, तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया। और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं, तो घर जमाई में बहुत मजा आया। और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

0: घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है वो आदमी। शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे वो सारे कैरेक्टर्स। वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई,
0: ये तो
1: ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो
0: बिल्कुल
1: सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल बनाना बहुत मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी बोझ पर सिर
1: डायरेक्शन के
0: पर?
1: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है। और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम।
0: जी
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6 6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है, और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
0: अच्छा आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परसेंगे परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
1: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया। लेकिन उसका फायदा ये भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स

0: से आपको ऑडियंस का, ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।

0: अनन जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे।
0: जी
1: वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है, जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा। नहीं, वो सही बात नहीं है, रेडियो का भी महत्व है। इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक
1: हम
0: कहा।
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं। गाना है,
0: ओह
1: सुनिए।
0: अच्छा, बहुत खूबसूरत।

आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ।

0: बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए कि कितनी गलतियां आपको मिलेंगी, वो सिर्फ मैं जानता हूं। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है।
0: जी
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से। और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं हैं, आप क्या करते हैं?
1: हाँ, संगीत में
0: रुचि है?
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो
0: बिल्कुल।
1: सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाह कि दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
4: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी आप रातों में चमनी सरकती है।
4: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
4: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
4: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
4: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
4: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से 102.7 FM पर। और आज का ये अंक आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ रहे होंगे और ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। साथ ही अपने जीवन में संतुलन बनाकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी में भी जुटे होंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। और आइए अब चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन, यानी 22 सितंबर को। दोस्तों, 22 सितंबर को हम मना रहे हैं V.S. श्रीनिवास शास्त्री जयंती। 22 सितंबर को भारत के महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रख्यात वक्ता V.S. श्रीनिवास शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के वलंगई मान गांव में हुआ था। वे अपनी असाधारण अंग्रेजी वाक्पटुता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें सिल्वर टंग्ड ओरेटर यानी रजत जिह्वा वाले महान वक्ता कहा जाता था। V.S. श्रीनिवास शास्त्री का पूरा नाम वलंगई मान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और बाद में एक सफल प्रधानाचार्य बने। शिक्षा और समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण उन्हें राष्ट्रीय जीवन की ओर ले गया। दोस्तों, इनका स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान था। श्रीनिवास शास्त्री गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित थे और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़कर देश सेवा का कार्य किया। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश और विदेश दोनों जगह अपनी प्रभावशाली आवाज उठाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, बाद में उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। V.S. श्रीनिवास शास्त्री का मानना था कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने शिक्षा में अनुशासन, नैतिकता और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया। वे छात्रों को ज्ञान के साथ साथ अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देते थे। दोस्तों, V.S. श्रीनिवास शास्त्री का जीवन युवाओं को यही सिखाता है कि ज्ञान, अनुशासन, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया जा सकता है। उनकी वाणी और विचार आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, अंत में V.S. श्रीनिवास शास्त्री भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण को अपना जीवन समर्पित किया। उनकी जयंती हमें ज्ञान, ईमानदारी और सेवा की भावना

दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से 102.7 FM पर प्रतिदिन शाम 5 बजे। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है आज का विषय। आज का विषय है डिजिटल दौड़ में मातृभाषा की नई उड़ान।

0: दोस्तों आज का समय डिजिटल क्रांति का समय है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक तेज और जुड़ा हुआ बना दिया है। इस डिजिटल दौड़ में अंग्रेजी जैसी वैश्विक भाषाओं का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन एक सुखद बदलाव ये भी है कि मातृभाषाएं भी डिजिटल दुनिया में नई उड़ान भर रही हैं। हिंदी सहित भारत की अनेक भाषाएं अब तकनीक के माध्यम से ज्ञान, शिक्षा और संवाद की मजबूत भाषा बन रही है। मातृभाषा वो भाषा है जिसे हम बचपन से अपने परिवार और समाज से सीखते हैं। यही भाषा हमारी सोच, भावनाओं और संस्कृति की सबसे सहज अभिव्यक्ति होती है। मातृभाषा में सीखना और समझना आसान होता है और ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत बनाती है। दोस्तों आज मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल समाचार और सोशल मीडिया पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बड़ी मात्रा में सामग्री यानी कंटेंट उपलब्ध है। लोग अपनी भाषा में वीडियो देखते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं। इससे डिजिटल दुनिया अधिक समावेशी और सभी के लिए सुलभ बन रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुवाद तकनीक के कारण अब कई डिजिटल सेवाएं भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो रही हैं। आवाज से टाइप करना, भाषा अनुवाद और स्थानीय भाषा में जानकारी प्राप्त करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। नई शिक्षा व्यवस्था में भी मातृभाषा में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। जब बच्चे अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो वे विषयों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मातृभाषा में उपलब्ध पाठ्य सामग्री ग्रामीण और दूर दराज के विद्यार्थियों तक भी पहुंच रही है। इससे शिक्षा के अवसर बढ़ रहे हैं और डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि डिजिटल दुनिया में मातृभाषाओं की उपस्थिति बढ़ रही है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं। कई तकनीकी सामग्री अभी भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान डिजिटल संसाधन और तकनीकी उपकरण अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। इसलिए स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री तैयार करना आवश्यक है। दोस्तों युवा इस बदलाव के सबसे बड़े भागीदार हैं। वे अपनी मातृभाषा में लेख, वीडियो, ब्लॉग और शैक्षिक सामग्री तैयार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी भाषा का सम्मानपूर्वक उपयोग करके वे भाषा और संस्कृति दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी भाषा को आधुनिक और सशक्त बनाना युवाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। डिजिटल युग ने मातृभाषाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। तकनीक और मातृभाषा का यह संगम ज्ञान, संस्कृति और विकास को नई दिशा दे रहा है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम डिजिटल प्रगति के साथ अपनी मातृभाषा को भी सम्मान और महत्व दें। यही हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की सच्ची ताकत है।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
2: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
2: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

0: आवेदन शुल्क 118 रुपए निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस अंक में, और आज का अंक आप सुन रहे हैं अपने रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, अक्सर लोग एग्जाम आने के कुछ दिनों पहले ही सीरियस होते हैं और बड़े बड़े स्टेप्स, बड़े बड़े टारगेट सेट करने लगते हैं कि इतने दिनों में इतने चैप्टर कर लेंगे, इतने दिनों में इतने चैप्टर कर लेंगे। ऐसे में उन्हें केवल वही याद हो पाता है जो उन्हें पहले से ही पता होता है। इत्मीनान से पढ़ी हुई चीजें याद रह जाती हैं और परीक्षा हॉल में वही काम आती हैं, और हड़बड़ी में पढ़ी हुई चीजें छू मंतर हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि निरंतर पढ़ी हुई चीजें ही लंबे समय तक आपके दिमाग में रह पाती हैं। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप इत्मीनान से बैठे हैं, तो अन्य अभ्यर्थी, अन्य स्टूडेंट्स भी आपकी तरह ही कर रहे होंगे। निरंतर पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। दोस्तों, आज के इस भागम भाग वाली जिंदगी में अक्सर हम अपने घर वालों, अपने परिवार वालों के फोन नंबर याद नहीं रख पाते। पहले के समय याद रखते थे, लेकिन अब जब से हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और एक क्लिक पर हम किसी को भी फोन या कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो इस अवस्था में हम नंबर्स याद रखने की स्थिति में नहीं रखते हैं। ऐसे में हमें अपने फोन में इमरजेंसी नंबर्स को सबसे पहले सेव करना चाहिए। इमरजेंसी नंबर यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स। दोस्तों, कभी भी कहीं भी किसी स्थिति या किसी संकट में फंसने पर आपको किसी का भी नंबर याद नहीं आएगा, तो सबसे पहले क्या करें, अपने फोन में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स सेव कर ले। जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है 112, पुलिस को सूचित करने के लिए 100 यानी 100 नंबर, अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड को 101, एम्बुलेंस की सहायता लेने के लिए 108 या 102, महिला हेल्पलाइन के लिए 181 यानी 181, महिला पुलिस हेल्पलाइन के लिए 1091, साथ ही साइबर अपराध हेल्पलाइन जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हेल्पलाइन नंबर हो सकता है, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930। दोस्तों, सड़क दुर्घटना या राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033। दोस्तों, 112 यानी 112 भारत का एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है, इसे अपने फोन में जरूर सेव करें। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा और आज ही आप अपने फोन में ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स जरूर सेव करेंगे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

केहू के घरे में बचपन विराम हुआ तो केहू के घरे में पूरा परिवार सर्दी जुकाम बुखार, मतलब हर तरीका से परेशानी बनल है। और आपके पता है कि ऐसन काहे हो रहल बा? ऐसन एक खातिर होत बा कि बरसात के समय बीतल बा और चारों तरफ मच्छर माछी के प्रकोप बा। मच्छर माछी के साथ पानी भी दूषित हो जाला और वह पानी हम इस्तेमाल करीला तो बेरामी तो होबे करी। अगर हम सब लोगन के स्वस्थ रहे के है तो पानी हमेशा साफ सुथरा इस्तेमाल करे के चाहिए। एक खातिन दूषित जल से बचें। आपके पता है बहिन, लोगन की एक घूंट गंदा पानी और 10 दिना के बिस्तरा पर हम लोगन के रहे के पड़ाला। काहे कि देखा, बारिश के दूषित जल से सबसे बड़ा खतरा होला। नल, हैंडपम्प, कुआं का पानी ऊपर से साफ दिखाई देला पर अंदर से जहर के समान होला। गंदा पानी से देखा डायरिया, उल्टी, दस्त, पीलिया, टाइफाइड, पेट में कीड़ा जैसन समस्या भी हो सकला। कभी कभी देखा साफ दिखाई देवे वाला जल भी देखा दूषित हो सकला। काहे कि देखा जोन बैक्टीरिया आँख से दिखाई नहीं देवाला वो पानी में रहला और पानी के दूषित कर देवाला। और सबसे बड़ी बात देखा, अगर पानी दूषित बा, पानी में बैक्टीरिया बा, तो ओकर का लक्षण है ये लोग हम लोगन के भी जान लेवे के चाहिए। पहले देखा पानी में महक और खारापन लगी। दूसर सफेद कपड़ा छाने पर पीला या काला कचरा निकली उनमें से। बरसात के बाद हैंडपम्प के पानी मटमैला हो जाला। साथ में देखा घर में एक संगे कई लोगन के बीमार होवल भी। और अगर कुआं के पास अगर शौचालय हो तो कुआं में भी जो पानी बा वो भी प्रदूषित हो जाए। अगर घर में एक साथ कई लोग बीमार पड़त हवा तो ये भी एक सामान्य लक्षण बा कि पानी जो हम लोगन इस्तेमाल करते हैं वो दूषित है। और इस सब परेशानी से बचे के खातिर कुछ उपाय करल बहुत जरूरी हो जाला। जैसे पानी के उबाल के छान के ठंडा करके घड़ा में रखें, ओके फिर इस्तेमाल करें। पानी के कपड़ा से छान कर ही रखें। साथ में देखें, साथ में हमेशा ध्यान रखें कि हैंडपंप के 10 फीट दूर तक शौचालय या नाली ना बने देवल जाए। हफ्ता में एक बार राखी से अंदर के तरफ घड़ा के जरूर साफ करल जाए। और साथ में पानी का टंकी है तो साल भर में एक दो बार ब्लीचिंग पाउडर चाहे फिटकरी ओके डाल के साफ कर देवल जाए। मटका के हमेशा ढक के रखल जाए और साथ में डुबा के पानी तो बिल्कुल भी नहीं निकाले के चाहिए। वहीं लोगन बातचीत आगे हम लोगन और करल जाए। पर देखा मन फेर अगर हो अपने कार्यक्रम में तो का पूछे के है तो शांति देवी की बहन के गावल एक थे पहपट गीत बा। हम तो कहते ना बिना देर के लिए आवन कर गीत सुनल जाए।

सब बहिन लोगन के राम राम। और बताएं बहिन लोगन, का हाल समाचार बा आप सब लोगन का? उम्मीद बा कि आप सब लोगन स्वस्थ और मस्त हुई हैं। बहिन, ए समय हम सब लोगन थोड़ बहुत परेशानी से गुजरत हैं,

0: बहिन लोगन देखे गीत हम लोगन सुनल गई, अब आगे देखे बातचीत करल जाए। और बहिन लोगन हम लोगन बार बात करत रहनी दूषित जल के विषय में। बहिन सरकार द्वारा भी प्रयास बा कि हम लोगन दूषित जल से बचल रही। ऐसे देखे आशा दीदी के द्वारा क्लोरीन का गोली बिल्कुल मुफ्त मिलेला। एक गोली जो क्लोरीन का होला वो 20 लीटर पानी के स्वच्छ कराला। जल जीवन मिशन के तहत देखे हर घर नल योजना चलावल जा रहल बा, ताकि केहू अपने नल का प्रयोग मतलब हर केहू अपने अलग अलग नल का प्रयोग कर सके और स्वच्छता ऐसे ही बनावल जा सके। बहन हम लोगन प्रयास में लगले रहल जाला कि केहू बीमार ना पड़े, केहू परेशान ना हो, पर कुछ लोग परेशानी के खुदे जाके न्योता दे के आवेलन। अब आप लोगन भी सोचत हुई है कि केहू काहे न्योता दे परेशानी के, पर आपे बतावे नशा करल का हा ना न्योता परेशानी के। ऐसे कहल गया है कि जे करी नशा ओकर होई दुर्दशा। ई बात बिल्कुल सुलहो आना साच बा। अब दुर्दशा कैसे होला, केहू सिगरेट बीड़ी पियल शुरू करला तो एक ठे दिन भर में पियला, फिर सोचला कि एक ठे और, फिर कई ठे पियल शुरू कर देवला, फिर एक महीना शौक से पियला, फिर वो आदत बन जाला, लत बन जाला, और फिर ओकरे पास पैसा हो या ना हो ओके पिए के ही है, चाहे ओकरे बदे ओके कुछ बेचे के ही काहे ना पड़ जाए। आपके पता नशा के सेवन से हम लोगों के शरीर में कई तरीका के बीमारी भी हो सकेला, जैसे कैंसर, बीपी, शुगर, मोटापा, किडनी का समस्या, लीवर का समस्या और अल्जाइमर जैसन भी समस्या हो सकला। ए बदे हमेशा नशा से दूर रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुशहाल रह सके। आमे जानकारी का क्रम बढ़ावल जाए और जानकारी सुनल जाए, यही विषय यानी कि अल्जाइमर कारण लक्षण और बचाव। डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी जवन की चिकित्सा अधिकारी ओबरा परियोजना चिकित्सालय से हम साजदा बेगम जी के बातचीत बा, तो हम तो कहते हैं बिना देर पहले इनकर जानकारी हम लोगों सुनल जाए।
1: बहनों, आज हम अल्जाइमर रोग के बारे में और उसके कारण, लक्षण, उसके बचाव के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी, जो कि ओबरा परियोजना चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि अल्जाइमर रोग क्या है?
2: देखिए, अल्जाइमर रोग यानी भूलने की बीमारी, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, मतलब बहुत कारणों से हो सकती है। उन्हीं में एक अल्जाइमर जो एक होता है, एक मुख्य कारण है भूलने की बीमारी होने का। तो ये जो कि अक्सर बड़े बुजुर्ग लोगों को ही होता है ना, होता क्या कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अब चीजों को भूलने लगते हैं, जैसे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे समस्याएं आने लगती हैं। और ये पुरुष महिला दोनों को हो सकता है, और अक्सर ये 60 साल के ऊपर मतलब इसके लक्षण आना दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पहले भी दिखते हैं तो उसके अलग वजह होते हैं, जैसे कि कुछ जैसे जेनेटिक होता है, कुछ जेनेटिक अगर जो कुछ जीन्स की है उनकी अगर जो रहता है तो उसकी वजह से पहले दिख जाते हैं। जैसे कुछ सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ है ना, उसमें हो जाता है, या कभी सर में चोट लगा हुआ है, पहले का है ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, और कभी कभी वायरल कुछ मेनिंजाइटिस या कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस है ना, और कुछ जैसे हाई बीपी है, स्ट्रोक आया है, तो उसमें कभी

0: कभी मतलब उम्र 60 से पहले भी ये
1: हो
0: अल्जाइमर
1: सकता
0: रोग
1: है,
0: हो सकता
1: या जैसे कभी ये होता है कि बच्चों को बहुत दिमागी बुखार हो जाता
0: है। हाँ
1: है
0: वही
1: या
0: वही वायरल
1: जी।
0: मेनिंजाइटिस की है, जो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस भी होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है। तो अगर ये इन्फेक्शन होते हैं तो इससे भी मतलब बचपन में होता है, तो इसकी वजह से मतलब बाद में चल के और जल्दी होने का अल्जाइमर हो सकता
1: जी
0: है।
1: जी तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अल्जाइमर के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि यह अल्जाइमर ही है?
0: अल्जाइमर के लक्षण में देखिए याददाश्त कमजोर हो जाती है ना,
1: जी
0: कुछ चीज याद नहीं रहती है, मतलब भूलने लगता है आदमी किसी
1: जी
0: चीज को, जैसे कि आदमी ये नहाया कि नहीं नहाया ये
1: जी
0: भूल जाता है
1: अच्छा,
0: ना।
1: ये इतनी छोटी छोटी सी
0: हाँ
1: बातें
0: छोटी छोटी बातें भूल,
1: जी
0: नाश्ता किया है कि नहीं किया ये भूल जाते हैं,
1: जी
0: दवाई खाई कि नहीं खाई ये भूल जाते हैं। कभी कभी वो इस चक्कर में कई बार दवाई खा लेते हैं
1: जी
0: भूलने की
1: जी
0: वजह से,
1: हाँ
0: ओवर डोजिंग हो जाती है। और जब घर के लोगों का नाम, बच्चों का नाम भूल जाते हैं, नहीं याद रह पाता है, कोई सामान का नाम याद नहीं रखता है, कटोरी है तो उसको गिलास बोलेंगे,
1: जी
0: गिलास को कटोरी बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। और अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, बाहर निकले
1: जी
0: और घर नहीं वापस आ पा रहे, किसी और जगह पे चले गए जाते हैं। नंबर्स नहीं याद रख पाते, जो कि अक्सर वो याद रख पाते थे अब वो नहीं रख पाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। सामान को कहीं कहाँ का कहाँ रख दिया, घर ही में खुद ही रख देते हैं, भूल जाते
1: सामान की
0: हैं।
1: तो डॉक्टर साहब पूछिए नहीं, सामान तो हम लोग भी कहीं ना कहीं रख
0: हाँ
1: के भूल जाते
0: हाँ
1: हैं, फिर
0: उनमें
1: उसको
0: ज्यादातर
1: खोजना शुरू।
0: उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है,
1: जी
0: जल्दी
1: जी
0: जल्दी भूल जाते हैं, है ना, जो कि जनरली मतलब वैसे तो हम लोग कभी कभार होता है,
1: हाँ
0: लेकिन वो
1: कभी कभी होता
0: हमें
1: है।
0: ज्यादा होने लगती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है भूलने की।
1: जी जी
0: जी और इसकी वजह से वो चिड़चिड़ाए रहते हैं, है ना, कि मतलब
1: जी
0: बार बार ऐसे जब भूलते हैं तो चिड़चिड़ाते हैं, उनमें गुस्सा आता है, थोड़ा परेशान रहते हैं, एक ही काम को कई बार करते हैं, है ना,
1: जी
0: और कोई बात करते हैं तो बात करते करते एक ही बात को कई बार
1: कई
0: अनेक
1: बार
0: बार कहते हैं। जैसे किसी को उधार दे दिया तो उधार दे के भूल जाते हैं कि किसको दिया था, है ना, याद नहीं आता है कितना दिया था, हिसाब किताब रखने में भी दिक्कत आने लगती
1: जी,
0: है।
1: तो ये सारे तो लक्षण हो गए। तो रामेश्वर जी ये बताइए कि जो अल्जाइमर बीमारी है तो ये किस कारण से होती है, इसकी
0: कारण
1: वजह क्या है?
0: देखिए रिसर्च के अनुसार जैसे कुछ तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं,
1: जी
0: जो कि हमारा दिमाग होता है, जो ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर्स होता
1: जी
0: है ना, दो पार्ट्स होते हैं, तो जो ग्रे मैटर में वो प्रोटीन्स के जमा हो जाती है ना,
1: जी
0: जिसके कारण ये होता है कि ग्रे मैटर्स का जो ब्रेन सेल है ना,
1: जी
0: वो डेड करने लगती हैं, और डेड होने की वजह से वो दिमाग का ग्रे मैटर का हिस्सा सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ के वो छोटा होता जाता है ना, जिसकी वजह से एक केमिकल्स एसिटाइल कोलिन जो कि ग्रे मैटर में बनते हैं,
1: जी
0: वो एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है, और उसकी कमी होने से और ये सारे भूलने वाले लक्षण अनेक
1: जी
0: दिखाई देने लगते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि किन कारणों से अल्जाइमर का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, जैसे हुआ है, और कौन कौन से कारण हैं या परिस्थितियां हैं उनसे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है?
0: जैसे मैंने बताया कि अभी जेनेटिक होता है, जैसे कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, कुछ एबनॉर्मल जीन्स होते हैं, जैसे
1: जी
0: APOE4 बोलते हैं एक जीन होता है, अगर जो वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है उसके डीएनए में, तो उससे अल्जाइमर्स के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और वो थोड़ा पहले ही लक्षण आने लगते हैं, और दिमागी तनाव रहता है, लंबे टाइम तक दिमागी तनाव है,
1: जी
0: अवसाद से ग्रसित है, डिप्रेशन है, हाई BP बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों से कंट्रोल नहीं रह रहा है,
1: जी
0: शुगर बहुत ज़्यादा है
1: अच्छा
0: ना, और नशे की आदत है, इससे भी चांसेस और तेजी से अल्जाइमर होने का
1: बढ़
0: रहता है
1: जाता है।
0: बढ़।
1: तो डॉक्टर साहब क्या महिलाओं में अल्जाइमर होने का खतरा ज्यादा होता है?
0: देखिए महिलाओं में मतलब ज्यादा मिलता है अल्जाइमर, इसलिए मिलता है क्योंकि देखिए महिला पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो होता
1: जी
0: है ज्यादा होता है ना, तो जब ज्यादा उम्र, क्योंकि मैंने बताया कि ये उम्र के साथ बढ़ता है
1: जी
0: बीमारी, तो उनमें मतलब ज्यादा देखने को मिलता है जो।
1: जी
0: और महिलाओं में देखिए जैसे ये मीनोपॉज होने के बाद ही
1: जी जी
0: जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, वैसे ही अल्जाइमर का खतरा और तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम होता
1: जी
0: है ना, उसके बाद से तो वैसे और भी सारी प्रॉब्लम्स आती ही है ना, उनके
1: जी
0: हड्डियों से हड्डियां कमजोर होना है ना, ऑस्टियोपोरोसिस
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, और
1: बहुत सारी
0: बहुत
1: परेशानियां
0: सारी
1: फिर बढ़ती
0: परेशानियां
1: हैं।
0: होती
1: जी
0: हैं ना मेनोपॉज के बाद, उसमें भी
1: हाँ
0: अल्जाइमर का भी रहता है कि उनका प्रोग्रेशन बहुत तेजी से होता है।
1: जी जी
0: जी
1: या ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में जैसे उनकी जिंदगी थोड़ा सा मुश्किल होती है, या फिर बहुत सारे उनको साफ सफाई न रखें या फिर सब हाइजीन न रखें, तो उसमें भी बहुत सारी बीमारियों के होने
0: हाँ
1: का खतरा भी, और उसके साथ साथ बच्चों की परवरिश है वो सब है,
0: हाँ
1: तो इन सब का भी असर पड़ता है।
0: हाँ घरेलू माहौल है ना।
1: जी तो डॉक्टर साहब अल्जाइमर रोग का इलाज किस तरह से हो सकता है?
0: वैसे तो कोई इसका स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि अल्जाइमर को ठीक किया जा सके, अभी तक ऐसा कोई दवाई नहीं आई है,
1: जी जी
0: लेकिन इसके लक्षण लक्षणों को काफी हद तक रोकने के लिए है ना कोशिश है और कुछ दवाइयां हैं। इसमें क्या है कि इसको जल्दी से जल्दी न्यूरो कंसल्टेशन करवा के

0: ना, देखना चाहिए और कुछ जांच कराना चाहिए। उसके बाद इसके लिए कुछ दवाइयां हैं, जैसे जिसकी वजह से अल्जाइमर के लक्षण आ रहे हैं
1: जी
0: उसको दिमाग में बढ़ाया जाए। तो कुछ दवाइयां होती हैं जो एसिटाइल कोलिन को है ना उसके दिमाग में बढ़ाती हैं, है ना,
1: जी
0: उसकी वजह से अल्जाइमर के लक्षण कम होने लगते
1: कम
0: हैं।
1: होने लगते हैं। तो जैसे बड़ों का इलाज होता है, सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी बच्चों में ये लक्षण दिख गया कि उसको शुरुआत से ये लक्षण दिख रहा है, तो उनका ट्रीटमेंट की क्या प्रक्रिया होती है?
0: बच्चों में तो अल्जाइमर का ऐसा कोई नहीं है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: बाकी है मैंने वो केमिकल्स की तो कमी, एसिटाइल
1: जी जी
0: कोलिन की कमी है, हमें एसिटाइल कोलिन का लेवल को बढ़ाना रहता है,
1: जी
0: तो हम वही उपाय करते हैं जिससे एसिटाइल कोलिन लेवल बढ़े।
1: डॉक्टर साहब, अगर किसी के घर में या किसी परिवार में अल्जाइमर का पेशेंट है तो उनकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए?
0: जी, अगर जो किसी के घर में अल्जाइमर के मरीज हैं
1: जी
0: तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनको अल्जाइमर की बीमारी है,
1: जी
0: उन्हें उन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और उनके हर तरह से सहायता करना चाहिए। अगर जो वो अल्जाइमर के रोगी अगर कोई काम करते हैं
1: जी
0: तो उनके काम में सहायता करना चाहिए, जैसे उनके लेन देन काम
1: जी
0: है,
1: जी
0: रख रखाव, कोई बिजनेस करते हैं तो उनके साथ में रहना चाहिए, उनके बर्ताव पे ध्यान रखना चाहिए, उनका आईडी और वगैरह ये सब उनके साथ रहना चाहिए, है ना, कि
1: हाँ
0: कहीं अगर जो भूल जाते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो सब चीजें रहनी चाहिए। और घर पे है तो घर पे उनके थोड़ा अल्जाइमर की वजह से जैसे मैंने बताया था कि ये चिड़चिड़ापन और
1: जी
0: ये सब
1: जी
0: रहता है, घर के अन्य सदस्यों को उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना
1: व्यवहार
0: चाहिए
1: करना
0: और
1: चाहिए,
0: घर।
1: क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि अक्सर लोग झिड़क देते हैं कि नहीं नहीं ये तो
0: हाँ
1: नाटक कर
0: हाँ
1: रहे
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: ऐसा कुछ नहीं
0: हाँ
1: है।
0: वही मैंने बोला,
1: जी जी
0: एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि वो ऐसा चीजें भूल जाने की वजह से कर रहे हैं
1: जी जी
0: और वो थोड़े चिड़चिड़े हैं, इसलिए हर चीज मदद करना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार
1: जी
0: करना
1: जी
0: चाहिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, वो उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके साथ में रहना चाहिए, उनकी जो भी दवाइयाँ चलती हैं
1: जी जी
0: उस पर ध्यान देना चाहिए, और कभी भी बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कब
1: जी
0: जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए
1: हाँ हाँ ध्यान
0: ये।
1: रखना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और उन्हें खुश रखने की भी
0: हाँ
1: कोशिश
0: खुश
1: करना।
0: रखना चाहिए
1: जी
0: उनके
1: जी
0: साथ, बच्चों को छोटे बच्चों को उनके साथ खेलने के लिए प्रमोट करना चाहिए कि
1: जी जी
0: खेलें और उसमें लगे रहें, है ना, बच्चों के साथ खेलते हैं बड़े बुजुर्ग तो वो उनका मन खुश रहता है
1: हाँ, उनका
0: और
1: ध्यान भी थोड़ा सा
0: ध्यान,
1: अलग रहता
0: हाँ
1: है,
0: अलग रहता,
1: दूसरी चीजों में
0: तनाव
1: लगा
0: कम
1: रहता है।
0: रहता है,
1: जी
0: तनाव
1: तनाव
0: कम हो
1: कम रहता
0: जाता
1: है, क्योंकि कहा जाता है कि परिवार में खुशियाँ होती हैं, तो जब सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी टाइम बिताते हैं
0: जी,
1: तो उसमें इंसान को जो दुख परेशानी रहती है वो भी
0: हाँ
1: कम
0: वो
1: हो
0: कम
1: जाती है।
0: हो
1: जी
0: जाती है
1: जी
0: ना।
1: अल्जाइमर रोग से बचाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: इसके लिए बुजुर्गों को ये सलाह देंगे कि उनको किसी
1: जी
0: काम में सक्रिय रहना चाहिए,
1: जी जी
0: जैसे कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें
1: हाँ
0: और कुछ दिमागी खेल जैसे क्रॉसवर्ड बनाने वाला होता है ना
1: जी
0: उसको वैसा खेलें, ऐसा करने से एक्टिव रहने से होता क्या है दिमाग में नए सेल्स का निर्माण होता है,
1: जी
0: इससे जो है लक्षण कम दिखाई देते हैं, और थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, अब बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल है चेक करते रहना चाहिए और इसको कंट्रोल में रखना चाहिए,
1: जी
0: नशे से दूर रहना चाहिए,
1: हाँ,
0: है
1: ये तो आपने सही बताया कि
0: ना।
1: एक्सरसाइज करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को बिजी रखना चाहिए।
0: जी
1: जी जी तो डॉक्टर साहब, आज आपसे अल्जाइमर रोग के बारे में ढेर सारी बातें हुई और आपने अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद हम लोगों के भी तरफ से कि इतना बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब देलना, और डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी के देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें बहन, हम लोग जैसे चर्चा करत रह लिए जा कि एक हम लोगों का जौन भी नशा बा, धूम्रपान बा, ये भी एक कहीं न कहीं कारण बा। और देखें सबसे बड़ा मतलब पक्का कारण तो नहीं है, पर ये कारण भी जोखिम बढ़ावा लन, जैसे 65 साल के बाद सबसे बड़ा कारण हो जाला अपन ई अल्जाइमर हुए का। परिवार में मतलब केहू भी कई मतलब केहू कैसनो समस्या बा, उ समस्या अगर ज्यादा केहू दिमाग पे ले लेवाला उसे भी इस समस्या देखा आ जाला। और साथ में बीपी शुगर मोटापा धूम्रपान बा, ओहू से देखा ही समस्या आवला। और सिर में अगर पुरान चोट बा या व्यक्ति अकेले रहत बा या कम पढ़ल लिखल बा तो उसे भी देखे बाद में ये सोचत सोचत ये समस्या आ जाला, ये अल्जाइमर जैसे समस्या के जोखिम बढ़ जाला और इस समस्या से आदमी जूझत रहला। और इसे सबसे बढ़िया बा कि अपने परिवार में जे भी ऐसा बीमारी से ग्रसित बा ओके आप सराहना ओकर करें, ओकरे साथ समय बितावें, और अगर केहू कुछ भूलत भी बा तो ओके समय समय पे याद दिलावत रहें, उनके साथ खुशहाल परिवार जैसे एक साथ रहें, अपर खुशनुमा परिवार अगर उनके साथ रही तो इस समस्या से उनके शायद थोड़ बहुत छुटकारा मिल सकला। तो देवल जय, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।

कितना बढ़िया गीत हम लोगन सुनल गई, और शांति देवी के देवल जय बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बढ़िया कहरवा सुनौली ना। और देखे जब मन एकदम फरिश हो जाला ना, तो तन के भी स्वस्थ रखे के उपाय हम लोगन के सोचल जा सकेला। तो तन के अगर स्वस्थ रखे के हा, तो देखें कुछ न कुछ हम लोगन के रसोई में ही ऐसा चीज होला जेके इस्तेमाल करके हम लोगन स्वस्थ रखल जा सकेला। और हम लोगन के जोन रसोई के जोन बगीचा बा, जहाँ टोकरी बा, ओमे चुकंदर देखा हर घर में देखा ज्यादातर मिलेला। और चुकंदर देखा बहुत ही फायदेमंद होला, और देखा ओकर असर सीधा शरीर पर होला, जैसे खून बढ़ाला। चुकंदर में आयरन होला, फोलिक एसिड होला, विटामिन सी, तीनों मिलकर खून बनावला। और एनीमिया वाली जन बहिन लोगन होलिन, बचवा लोगन होलन, वो लोगन के खातिर रामबाण बन जाला। जैसे कि एक चुकंदर अगर हम रोज खाते हैं तो 1 महीना में हम लोगन का हीमोग्लोबिन बढ़िया हो जाला। और साथ में देखा है बीपी भी कंट्रोल कराला, एमे देखा नाइट्रेट होला, शरीर में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनावला, और जो नस होला ओके चौड़ा कराला, बीपी कम हो जाला। और सुबह खाली पेट एकर जूस पिए तो देखा 4 घंटा में बीपी 10 पॉइंट नीचे घट जाला। अपन देखा डॉक्टर भी एके पिए के सलाह देवलन, और देखा एके इस्तेमाल से दिमाग तेज होला, वो नाइट्रिक ऑक्साइड दिमाग में खून बढ़ावला। और जो बुजुर्ग लोग होलन वो के जो एग्जाइमर जैसे भूले वाला बीमारी होला, एक के इस्तेमाल से वो भूले वाला बीमारी भी नहीं होला। और पढ़े वाले बचवा लोगन के देवल जाए तो उनका दिमाग भी विकसित होला। हम लोगन के शरीर में लीवर एक ऐसा चीज़ बा जेके हम लोगन के भोजन पचावला, तो लीवर भी हम लोगन के एक के जोन बिटे नाम का जोन तत्व लीवर के जहर निकालला, वो रोज दारू गुटखा खाए वालन का जोन लीवर होला यही से बचाला। तो देखा इतनी बढ़िया जानकारी जब चुकंदर के इस्तेमाल से हो सकेला, तो हम लोगन काहे ने चुकंदर का इस्तेमाल करें। और देखा यही बाती के संगे हम तो कहब कि आज के भी कार्यक्रम यही समेटे का हो रहा बगत, फिर अगले बैठकी में भेंट हुई, मुलाकात हुई, बढ़िया बढ़िया बात हुई। तब तक खातिन अपने गोलावा बहन के दी इजाजत, सब बही लोगन के राम राम।

घरनी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश

0: शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 3,567 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बंटले बदे आयोजित कार्यक्रम में शामिल भेले। ये मौका पर वहां के कहलें कि एगो शिक्षक का दायित्व खाली पाठ्यक्रम के खत्म करे के नहीं होला, बल्कि छात्र छात्रा लोगों के हर तरह की नकारात्मकता से बचा के उनका पुरहर विकास कैल हो।
1: केवल एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, 3,567 ऐसे लोगों का चयन करके जिनके हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक गुरुत्वर दायित्व भी है, और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आज आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गति कैसे होनी चाहिए यह आपके द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी तय करेगा। सरकार उद्योग लगाने के लिए माहौल दे सकती है, उद्योग लगवाने में मदद कर सकती है, लेकिन वह उद्योग इनोवेशन का आधार बनेगा, एम्प्लॉयमेंट का आधार बनेगा, यह आपके द्वारा पढ़ाए गए और प्रशिक्षित किए गए छात्र ही तय करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले आवे कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी हो, जकरे बदे मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जन भागीदारी जरूरी बा। श्री मोदी आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के लिखल एगो लेख साझा कैले। वहां के कहले कि श्री पाटिल जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक पर आधारित समाधानन के जरिया से जल प्रबंधन के जलवायु के अनुकूल बनावे के भारत के कोशिशन पर लिख ले आवे। केंद्र सरकार बैंक कर्मचारियों से हड़ताल ना करे और बातचीत के जरिया से मामला के सुलझावे का आग्रह कैले हवे। सरकार का ई अपील 28 से 30 सितंबर ले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ ऑडियो यूनियन आसंघन के 3 दिन का पूरा देश में हड़ताल के देखत कैल गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 बरस पूरा कर रहा हवे। ये दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथे सेवा और सुशासन उनकर लक्ष्य रहल हो। यही सोच के साथे सरकार का बरिस 2047 ले विकसित भारत बनावे का संकल्प हवे। ई संकल्प समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के बढ़ावा दे रहल हो। ये से लोगन के जिंदगी में बदलाव आ रहल हो। एक जिला एक उत्पाद योजना पर एगो खास रिपोर्ट।
2: एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हर जिले के प्रमुख स्थानीय उत्पाद की पहचान की गई है और इन उत्पादों को ब्रांडिंग, जीआई टैग, ई कॉमर्स और निर्यात के जरिए बड़े बाजारों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है।
3: यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। ये योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है।
2: ओडीओपी में शामिल काशी की पारंपरिक मिठाई लौंग लत्ता अपने खास स्वाद और आकर्षण के चलते लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। लौंग लत्ता विक्रेता उदय यादव का कहना है कि ओडीओपी के तहत लौंग लत्ता को बढ़ावा मिलने से काशी की इस खास मिठाई को नई पहचान मिल रही है और इसकी मांग बढ़ रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना स्थानीय उत्पादों की पहुंच देश और विदेश के बाजारों तक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत पहला स्वर्ण पदक जीत लिया ले हवे। भारतीय महिला टीम आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका के 147 रन से हरा दिया लस। ई एशियाई खेल में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पद को बांटे। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वां ओवर में कुल 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनौलस। स्मृति मंधाना शानदार 79 रन का पारी खेललस। ये मैच में वहां के 11,000 रन पूरा कई के इतिहास रच दियालिन। ये उपलब्धि हासिल करे वाला वो दुनिया का पहला महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी गई बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्ण पदक जीतले पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बधाई दिया ले हवे। मौसम विभाग आवे वाला 3 दिन में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरखा भइले का आगम जतौले हवे। विभाग के हिसाब से आवे वाला 24 घंटा में तापमान में कौनो बढ़हन बदलाव भइले का आगम नहीं खे। समाचार पूरा भई, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना और कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सोनवानी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 29 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, लंबा चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, लंबे काले बाल। इन्होंने हरे रंग का सूट पहना है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें।

एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री लखेंदर निवासी ग्राम इम्मा थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र जो दिनांक 12 जुलाई से लापता हैं, इनके साथ इनका पुत्र कान्हा भी है जिसकी उम्र 2 वर्ष है। श्रीमती संध्या देवी की हुलिया इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, गोल चेहरा, इकहरा बदन। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें।

अब एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे का। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी बात। आपके लिए ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात 9:30 पर। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे रात 9:15 पर। श्रोताओं सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात 8:00 और रात 8:15 पर। प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और सबरस कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:31 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: के राम राम।
1: भैया आपको राम राम। और बतावे हाल चाल।
0: और तो हाल देखा सब ठीक बा चलो भैया। और देखा कहल जाला ना कि अचलो भैया हमहन के पंचायती देखे अबे सही समय पर जुट गई बा। और ये देखा पंचायती में चर्चा के एक बहुत बड़ा मतलब एक जरूरी बात यह समझ ल कि बा कि भैया अपने दैनिक जीवन में चाहे कौनो जगह भैया जो मा शिक्षा के कितना जरूरी होला।
1: ऊपर चर्चा बहुत जरूरी बा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: देखा बहुत सही याद दिलौला नंदू भैया। देखा अभी कुछ दिन पहले एगो घटना घटल रहे, शायद आपके मालूम भी हो कि देखा अपने गांव के जन करीम चचा हुअन, वो मजदूरी से रोज अपन कमाई करके जनवा परिवार का गुजारा चलावत रहलन। लेकिन एक दिन जनवा ना मोबाइल पर एगो अनजान व्यक्ति का जनवा फोन आयल और बतौलस कि भैया जौन जौन मंगलस जानकारी, वही हिसाब से वो जानकारी ऊपर भी भरोसा करके जनवा वो जानकारी वो दे देलन। और जानकारी देहला के बाद जनवा वो ओटीपी पता नहीं कौन एगो जंजाल बा, वो ओटीपी दे देलन। ओकरे बाद कुछ देर में उनके खाता से कुल रुपया निकल गए। और जब उनके पता चलल कि वो ठगी का शिकार हो गए बड़न, तब बहुत पछतेलन उन।
0: चलो भैया देखा वही से कहल जाला ना चलो भैया कि ये देखा घटना के जो जानकारी हमन के पता चलल बाद में भोला भैया के माध्यम से भी साइबर क्राइम रिपोर्ट अगर करवा करके और उनका जो पैसा गायब भइल रहे वो वापस भी हो गई। उकरे बाद से करीम चाचा गांव के लोगन के समझौले कि भैया बैंक के जानकारी जो बा ओटीपी चाहे कोनो पासवर्ड या कोनो अनजान आदमी के न बतावल जाए। सावधानी जो बा जानकारी आज समय पर
1: शिकायत ठगी से बचे के ये देखें सबसे उपाय एकदम पुख्ता बा। बिल्कुल बिल्कुल आनंद भैया। देखा एकर मुख्य कारण यह भैया कि देखा उनके जानकारी के अभाव रहा। और कहल जाला कि ही बड़का बड़का जन हाथे में लेके चलत मन लो भाई जन बा, वो मेन जन बा ओकर जानकारी ना ही पढ़ले लिखले ना नहीं, लेकिन मोबाइल खूब चलावे वाला। लेकिन कहल जाला कि जानकारी के बिना हर ज्ञान अधूरा बा। तो भैया देखा ये जो सर्व शिक्षा अभियान बा वो मेन देखा इहो व्यवहारिक ज्ञान भी आवेला कि कैसे जन बा अपन जन बा जन बचवा हो ओके शिक्षा से जोड़ के जन बा स्कूल तक तो पहुंचावल जाए। साथ में दैनिक व्यवहार भी हो जोन उमेन सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ल बहुत जरूरी बा। और गांव के जन गरीब परिवार के जन बच्चा हुआ उनके खातिर शिक्षा के आगे बढ़े बढ़ावे खातिर एगो महत्वपूर्ण साधन हो गए। और देखा पढ़ाई से बचवा लोग उनकर अधिकार बा और जिम्मेदारी समझ के जन बा शिक्षित लोग जन बा उनके स्कूल तक तो पहुंचावे, ये उनकर एगो जिम्मेदारी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल अचल भैया। और देखें लड़का लड़की सभी के समान रूप से शिक्षा मिले के चाहिए, इस समाज खातिर भी जरूरी बा। शिक्षा से परिवार और समाज के विकास में एक नया रास्ता खुलला अचल भैया। और ऐसे हर अभिभावक के चाहिए कि वो अपन बच्चा लोगन के नियमित रूप से स्कूल भेजे। शिक्षा खाली नौकरी पावे के एगो साधन ना बा अचल भैया, बल्कि जीवन के सही समय या सही दिशा देवे वाला एक माध्यम बा। जो पढ़ल लिखल बच्चा आगे चल के तकनीक के या कोनो नई जानकारी से बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके वो अपन जीवन के जौन बा बेहतर बना सकल है।
1: बिल्कुल, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी योजना हो, चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, हर जगह वो अपन काम कर सकेला। देखा यही से कहा जाला ना कि रुपया के जो लेन देन होखे वाला जो धोखाधड़ी बा वो से सावधान रहे में ये शिक्षा काफी मदद करेला। गांव के बचवा जन बा पढ़ लिख के खेती हो चाहे रोजगार चाहे व्यवसाय के नया तरीका वो सीख सकेलन। शिक्षा परिवार के आर्थिक स्थिति सुधार में भी योगदान दे सकेला। और कहल जाला भी कि जब गांव का बच्चा शिक्षित होए तो पूरा समाज का सोच और विकास दोनों में बदलाव होए। ये शिक्षा से महत्व कर समझावल जाए तो देखा हर बचवा के स्कूल से जोड़ के हमन भी अपने जिम्मेदारी के निभावल जाए।
0: बिल्कुल अचलो भैया। और आज के समय में शिक्षा के साथ डिजिटल जोन बा जानकारी ओकर भी बहुत जरूरी बा अचलो भैया। मोबाइल चाहे इंटरनेट के सही इस्तेमाल कैसे करल जाए, बच्चा पढ़ाई में नया जानकारी हासिल कैसे कर सकेले, या इंटरनेट पर मौजूद गलत जानकारी भी देखे कुछ आ जाला या ठगी से सावधान कैसे रहल जाए, इस शिक्षा बतावेला। और स्कूल में बच्चन से सवाल पूछे समझे आज जानकारी के पहचान करके क्षमता के अपन जोन में विकास
1: कर सके।
0: बिल्कुल।
1: और देखा कहा जाला भैया कि शिक्षित समाज में लोग सरकारी सुविधा और अपन अधिकार के बेहतर ढंग से समझ सकेला। बेटी हो या बेटा दोनों के समान शिक्षा मिले से परिवार के भविष्य मजबूत हो सकेला। और देखा हमन का बात बतकई तो होत रही, लेकिन आज के पंचायती में बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र
2: मुकुल आनंद पांडे भैया भी देखा अपने पंचायत में जुड़ गए हुए और जलेबी भौजी से प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाता ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत अभियान ए विषय पर बात बत कही हो रहा बा तो हम तो कहते कि हम छुपायल जाए और ये जानकारी के सुनल जाए
1: तो आवाज सुनल जाए।
3: अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के साथ साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नित नए आयाम छू रहा है। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने, बच्चों को बुनियादी साक्षरता से जोड़ने और विद्यालयों का कायाकल्प करने के लिए शासन द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत मिशन जैसी दूरगामी योजनाएं जारी हैं। इन्हीं योजनाओं की जमीनी हकीकत, सोनभद्र को दूरस्थ क्षेत्रों तक इनका प्रभाव और भावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री मुकुल आनंद पांडे जी हैं। सर नमस्कार।
4: जी नमस्कार आपको।
3: सर सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हमारे सोनभद्र की भौगोलिक संरचना काफी विस्तृत और सुदूर है, ऐसे में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे जिले के प्राथमिक विद्यालयों के स्वरूप में क्या बदलाव आए हैं?
4: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं गणों को। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2018 में मिशन कायाकल्प की शुरुआत सोनभद्र जनपद से ही की गई और आज सभी हमारे 2075 विद्यालयों में कायाकल्प के तहत काम कराए गए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम लोग 100% सेचुरेटेड हो चुके हैं कार्य में, कायाकल्प के कार्य में।
3: जी यह तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और जिस स्वप्न के साथ सोनभद्र से इसकी आगाज हुई और आज जो फतह सोनभद्र ने हासिल किया, निश्चित रूप से इसमें पूरे शिक्षा विभाग की आपकी अहम भूमिका है, इसके लिए हमारी शुभकामना है, बधाई है। पर जो बदलाव है वह तो बेशक बड़ा ही सुखद है। अब हम बात करते हैं निपुण भारत मिशन की, जो इसका एक अभिन्न अंग है, एक पूरक योजना है। तो निपुण भारत मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कक्षाओं में इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है?
4: अवगत कराना चाहूंगा कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी छात्रों को, पहले इसका लक्ष्य कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 तक ही सीमित था, अब इसे बढ़ाकर कक्षा 5 तक कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी विद्यार्थियों में भाषात्मक योग्यता विकसित करना, साथ ही साथ गणितीय योग्यता का भी विकास करना है इसका प्रमुख लक्ष्य है। और इन दोनों योग्यताएं, भाषा संबंधित योग्यताएं हो या गणितीय योग्यताएं हो, इन दोनों को उनके स्तर के अनुसार कक्षा 1, कक्षा 2 उनके स्तर बनाए गए उनके अनुसार विकास करना है।
3: जी आपने भाषा की बात कही तो हमारा सोनभद्र जो है वह जनजातीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से परिपूर्ण है, यहाँ के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में भाषा और संवाद में कई प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती होंगी, तो ऐसी चुनौतियों को पार करते हुए और उन्हें निपुण बनाने के लिए शिक्षकों को कैसे तैयार किया जा रहा है?
4: सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्वे किया
3: जी।
4: जैसा कि एक बड़ा जनपद है और विभिन्न विषमताएं व्याप्त हैं भाषा के स्तर पे भी, आप अनेक ब्लॉकों में, जैसे ऊपर के ब्लॉक जिनको कहते हैं वहाँ की भाषाओं में, और जो नीचे के ब्लॉक हैं, सुदूर ब्लॉक हैं, जैसे बबनी हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ की भाषाओं में, और जनजातीय क्षेत्रों के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी भाषाओं में और उनके अभिव्यक्ति में भी अंतर होता है।
3: जी, जी।
4: जो जनजातीय बच्चे हैं वो आपसे उतना अधिक इंटरेक्शन नहीं करते हैं
3: जी।
4: और वो अपने लोकल स्तर पे, खासकर जो स्थानीय शिक्षक है अथवा जो गार्जियन है उन्हीं से वो अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है या बाहर के लोग जाते हैं, सर्वे की टीम जाती है, तो उनसे इंटरेक्शन नहीं करते, वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं
3: जी, जी, जी।
4: तो उनके इन स्वभावगत दृष्टिकोणों को देखते हुए, उनके इस स्वभाव को देखते हुए हम लोगों ने एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया कि जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को हम कैसे निपुण बना सकते हैं अपनी भाषा या अभिव्यक्ति क्योंकि जब ये निपुण का टेस्ट होता है तो उसमें उनकी अभिव्यक्ति ही जानी जाती है, भाषा की अभिव्यक्ति, गणित की अभिव्यक्ति। और जब वो शर्मीले स्वभाव के होंगे, जानेंगे उनको विषय का

0: होगा, जानकारी होगी, ज्ञान भी होगा, लेकिन वह यदि अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं तो अच्छे तरह से अपना प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग्स में उनके अभिव्यक्ति पर ही जोर दिया कि कैसे जनजातीय क्षेत्र के बच्चे अपनी अभिव्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपने अभिव्यक्ति को करेंगे। तो हम लोगों ने इसके लिए अलग से एक टाइम टेबल बनाया विद्यालयों में और निर्देशित किया शिक्षकों को कि आप बच्चों से अभिव्यक्ति के ऊपर ही एक घंटे का क्लास चलाएंगे, उनसे प्रैक्टिस कराया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, एक्सरसाइज कराया जाएगा। और ये विधा हम लोगों को काफी काम आई, जिसे हम लोग निपुण में बहुत अच्छा कर पाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है, बच्चे वैसे भी स्वभाव से शर्मिले होते हैं, यदि उनके साथ एक फैमिलियर एटमॉस्फियर और उनकी स्थानीय भाषा में उनसे बोलचाल संवाद किए जाए तो वो बहुत कम समय में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। यह तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। स्कूलों में आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्ट क्लास और ICT लैब का जुड़ाव बच्चों के ठहराव और उपस्थिति पर कितना प्रभावशाली है?
0: देखिए, हमारा ग्रामीण परिवेश होने के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ICT लैब या स्मार्ट क्लास या TV का दर्शन किया है
1: जी।
0: तो उनके लिए काफी रोचक होता है और इसी बहाने वो विद्यालय में आते हैं।
1: उनके उपस्थिति के लिए ये बड़ा ही आकर्षक,
0: बहुत आकर्षक एक वस्तु
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: और हम लोगों के लिए बहुत ही सहायक है उपस्थिति बढ़ाने के लिए, और उपस्थिति बढ़ती है तो हम लोगों की आधी समस्या दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए सहयोगी रहा है, अच्छा रहा है और उपयोगी रहा है स्मार्ट जी। निश्चित रूप से स्मार्ट क्लास हम लोगों को सहयोग प्रदान किया, खासकर प्राथमिक शिक्षा में, जहाँ पे हमारे कम शिक्षक हैं या बच्चे अधिक हैं, शिक्षकों की आवश्यकता है, तो वहां पर हम लोगों ने स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षकों की कमी की भी पूर्ति की है, क्योंकि एक दो क्लास स्वयं स्मार्ट क्लास ही ले लेता है प्रत्येक कक्षाओं की, और उससे हमारी शिक्षकों की कमी की पूर्ति हो जा रही है।
1: बिल्कुल, और रोचक भी है, बच्चे भी आकर्षित होकर के,
0: मनोरंजक है।
1: हाँ, मनोरंजक है, बिल्कुल सही बात है। एक तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दूसरा मनोरंजन, तो उपस्थिति निश्चित रूप से भविष्य में
0: मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है, ज्ञानात्मक भी है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि खेल खेल में शिक्षा
0: जी।
1: तो इस पद्धति को कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लास ने फिर से उसकी पुनरावृत्ति करी है। पर सर, हम कहते हैं, हम आप सब ये जानते हैं कि किसी भी शैक्षिक बदलाव में अभिभावक और ग्राम पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अभिभावकों को इस मिशन से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: सबसे पहले हम लोगों ने अभिभावकों के नंबर नोट्स किए हैं स्कूल वाइज, और जो बच्चा नहीं आता है, स्कूल नहीं आता है या किसी परेशानी में रहता है, तो हम सीधे अभिभावक से संपर्क करते हैं। हमने इसके लिए पहली जो सीढ़ी बनाई है वो विद्यालय स्तर पे है, दूसरी सीढ़ी हमारी ब्लॉक स्तर पे है, और तीसरा जनपद स्तर पे है। जनपद स्तर की टीम विभिन्न ब्लॉकों के सुदूर क्षेत्रों के अभिभावकों से रैंडम स्तर पे संपर्क करती है और ये जानने का प्रयास करती है कि बेसिक शिक्षा विभाग की चल रही योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है, अथवा जानकारी है तो उसका आपने कितना लाभ प्राप्त किया। इस तरीके से और इस उपयोग से हमारे यहाँ छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, नामांकन में भी वृद्धि हुई है, और विद्यालयों में उपस्थिति तो बड़ी ही, साथ साथ कक्षाओं का ठहराव भी बढ़ता रहा।
1: सर, इन सब बातों को ही साथ में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सोनभद्र के अभिभावक और आम जनता के लिए क्या संदेश है?
0: मैं बार बार यही निवेदन करूंगा सभी अभिभावकों से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों अथवा शहरी क्षेत्र के हों, अपने बच्चों का नामांकन हमारे परिषदीय विद्यालयों में कराएं, और पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हमारे परिषदीय विद्यालय हो गए हैं। कायाकल्प के माध्यम से हमारे परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है। आज हम लोग 100% बालिका शौचालयों का निर्माण कर चुके हैं, पेयजल की सुविधा सभी विद्यालयों में, निःशुल्क किताबें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, स्मार्ट क्लास अधिक से अधिक विद्यालयों में हम आज पहुंचा चुके हैं, और हमारी निःशुल्क शिक्षा है, कहीं कोई किसी का शोषण नहीं है, शोषण रहित शिक्षा है। तो मेरी ये अपील है सभी अभिभावकों से कि आप अधिक से अधिक नामांकन कराएं, और नामांकन कराने के बाद जो हम लोगों ने परिणाम दिए हैं बच्चों को, चाहे वो योग्यता आधारित परीक्षा हो अथवा

0: यह बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।
1: धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद।
2: चलो भैया।
3: हाँ भैया, देखा है इसमें अभी अमन सुनत ललिजा प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाता ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत अभियान, और ये विषय पे मुकुल आनंद पांडे भैया से अपन जलेबी भौजी के बात उत अमन सुनत ललिजा
2: जो बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र के रहे और जानकारी बड़ा बढ़िया रहल
3: और जानकारी तब अच्छा लगे जब मौसम भी अच्छा हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और देखे चलो भैया एक बात तो हम कहा कि मौसम के जहां तक बात कैला तो किसान भैया लोगन खातिर देखा सबसे अगर कौनो जरूरी के बात बा तो भैया मौसम के बात बा, काहे से कि उनकर खेती बारी हर पहलू से जुड़ल जोन बा खेती से मौसम होला।
3: तो हम तो कहा कि इसे में जोन विशेषज्ञ भैया हूँ सिमंगल सिंह भैया जो की मौसम तकनीकी अधिकारी हूँ ग्राम कृषि मौसम विभाग से, तो जोन BHU वाराणसी से हूँ, अपन जानकारी में का बताओ हम सुन लिया
2: सुनल जाए।
4: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आने वाले अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसका मुख्य वजह है बंगाल की खाड़ी में जो ताजा निम्न दबाव क्षेत्र बना है जिसको लो प्रेशर एरिया कहते हैं, और जो लगातार नमी को लेकर उड़ीसा झारखंड और बिहार के पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास सक्रिय है, जिसके चलते जो है बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली नम हवाएं हैं इस क्षेत्र में पहुंच रही हैं। इन हवाओं का जब आपस में टकराव होता है तो अनुकूल हवाओं के कारण जो है ना बादल तेजी से विकसित होते हैं, जिसके दौरान जो है वाराणसी सोनभद्र समेत जो है आसपास के जिलों में ना रुक रुक कर हल्की से मध्यम बरसात के साथ कहीं कहीं जो है गरज चमक के साथ हवा की गति जो है सामान्य से अधिक रहेगी। तो इस समय जो है किसान भाइयों को जो है ना विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अगर तापमान की बात करें तो जो सामान्य तापमान चल रहा था उससे 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट होने की संभावना है अगले 4 दिनों तक के लिए। देखिए इस समय क्या है ना कि धान में बाली बनने की अवस्था अभी भी चल रही है, ऐसे में क्या होता है कि अगर तेज हवा और बारिश की स्थिति में मेड़ों की बराबर निगरानी करते रहें ताकि जो अनियंत्रित पानी का बहाव है वो न हो पाए, और यदि मौसम साफ हो तो कोई कीटनाशी या अगर पोषक तत्व का छिड़काव करना है तो उसको टालें, मौसम जब साफ हो तभी करें। अगर मिर्च की बात करें तो अभी क्या है ना कि उसमें फूल बनने की अवस्था है, तो किसान भाई क्या करें कि अभी जल निकास की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि होता क्या है अधिक नमी से ना फूल झड़ने और फफूंदी जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है खास तौर से मिर्ची के खेत में। और अगर वहीं सब्जी में बात करें तो जैसे कि भिंडी हो गया और कद्दू वर्गीय फसलें हैं अभी वो फलन की अवस्था में हैं, जो तैयार फल हैं उसको समय से तोड़ें ताकि जो नए फल आने वाले हैं उनको पर्याप्त समय मिले। और वहीं अगर हम पशुओं की बात करें तो दुग्ध पशुओं को जो है ना चूंकि मौसम अचानक से 2-3 डिग्री घट रहा है तापमान, तो ऐसे में क्या होता है कि जो दूध देने वाली पशुएं हैं ना उस पर विशेष ध्यान दें, उसको उनको क्या है कि छायादार स्थान पे ही रखें। ऐसे मौसम में चूंकि किसान भाइयों को भी पता नहीं है कि बारिश होने वाली है अगले 3-4 दिनों में, तो गीला चारा अगर हो जाता है उसको अधिक मात्रा में खिलाएंगे तो क्या है कि उनकी जो पाचन शक्ति है वो प्रभावित हो सकती है और जो दूध देने का उनका रेशियो है वो कम हो सकता है। आपके क्षेत्र में लगे कि भाई गरज चमक भी हो रहा है तो पशुओं को जो है पेड़ों के नीचे और कूले में न रखें, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे किसान भाइयों तो आपकी फसल में और पशुपालन में निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: नंदू भैया,
2: अच्छा भैया,
1: देखा अभी हम संदेश सुना चले जा। संदेश से पहले जनवा मौसम की जानकारी भी सुन ली, और मौसम की जानकारी के बाद जनवा जौने प्रकार से एगो सुदृढ़ शिक्षा हमन के अपन बात विचार रखे खातिर सहारा बनेला। वही तरीके से किसान भैया लोगन के भी अपन आमदनी बढ़ावे खातिर कृषि सहयोगी गतिविधियन के अपनावे की जरूरत बा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहानी सही बा। काहे से कि देखे अचलो भैया न, पहले के जो पुरनिया लोग रहे, दादा बाबा रहे, कहे भैया पहले बूझला तब बाझा, ताकि कहे कि उनका मनता ये रहे कि भैया कौनो भी चीज हो के पहले

0: ओके समझला, जौन भी करे के बा पहले पूरा जानकारी इकट्ठा करला, तब जाके वो काम के करा, तब जाकर के आपके सफलता मिली।
1: और देखा सही तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव के साथ जो कृषि सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से किसान अपने खेती के आमदनी वाला व्यवसाय में बदल सकेला। तो ऐसे ही देखा हमन के बात बतकई तो आगे भी होत रही, लेकिन आगे अपने कार्यक्रम में का बा?
0: तो देखे जानकारी क्रम में, अगले जानकारी क्रम में देखे पोल्ट्री फार्म में सामयिक कार्य का अपन अनुभव बा, जोन बा बसंत कुमार जोन मुर्गी पालक भी हुआ वो अपन भोला भैया से बात बत कही बा।
1: तो बिना देर के प्लीज जानकारी
0: आओ सुनल जाए।
2: श्रोताओं, कृषि सह व्यवसाय के लिए तमाम युक्तियाँ अपनाई जाती है, उसी में मुर्गी पालन एक विशेष है, जिसका सीधे बेच करके मुनाफा तो होता ही है, साथ साथ उनके जो बीट है वो कृषि कार्य में बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो जीवांश की मात्रा बढ़ाने में कारगर होती है। बरसात के मौसम में मुर्गियों का देखभाल हमें कैसे करना चाहिए, साथ साथ इसी लगले जो है कि ठंड का मौसम भी आ रहा है, दोनों को मिलन में किस प्रकार की बीमारियाँ या खान पान में देख रेख का कुछ करनी पड़ती है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कादल में श्री बसंत कुमार जी से मुलाकात हो रही है। आपका क्या कुछ अनुभव है, बातचीत होगी। बसंत कुमार जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: और मुर्गी तो बहुत जोन बोल रहे हैं
3: जी जी,
2: और बहुत तेज दिख रहे हैं, कौन प्रजाति के हैं?
3: ये देसी में सोनाली प्रजाति के हैं सर।
2: हाँ,
3: प्योर तो देसी की तरह दिखाई देते हैं, वो आवाज भी उससे मुंह से निकालते हैं।
2: तो ये दिन भर जो है कि ये ऐसी कोलाहल करते
3: हैं? दिन में तो कम करते हैं, रात में बहुत ज्यादा कोलाहल करते हैं।
2: रात में भी? हाँ। सोते नहीं है का?
3: नहीं, सोते बहुत कम है, और जानते हैं 2 बजे के बाद जैसे ही मतलब जानते हैं कि रात ढल गया है, तो एकदम इन लोग कुकड़ों को मचाना शुरू कर देते हैं,
2: जगाने वाला काम है
3: जी।
2: निश्चित रूप से मतलब उस समय के घड़ी माने जाते थे, जब घड़ी रेडियो टीवी वगैरह का चाहे मोबाइल नहीं था, तो जो आम हम लोग के पूर्वज लोग थे वे उनके बाग से जान जाते थे कि 3 बज गया,
3: 3 बज गया,
2: 4 बज गया है, तो पहला बाग पर, दूसरा बाग पर, तीसरा बाग कब जागना है, ओकरे हिसाब से जो है कि इनके
3: अलार्म का भी काम करते हैं।
2: अलार्म का काम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बरसात में क्या देख रेख करना होता है
3: सर? बरसात में बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो इस लोगों के ज्यादा चिड़चिड़ाहटपन होता है, और उसमें सर्दी जुकाम होने की ज्यादा चांसेस रहती है, तो इसमें सर्दी जुकाम का दवा ववा दिया जाता है।
2: अच्छा,
3: कोई विशेष नहीं, और पेचिस वगैरह का भी बीमारी आ जाता है, लूज मोशन हो जाता है। यही 2 बीमारियां ज्यादा आती है बरसात के समय में।
2: भाई, बरसात की वजह से थोड़ा शरीर ठंडापन हो जाता है
3: जी,
2: अब एक धूप निकलेगा तो चिड़चिड़ापन
3: हो जाता है, तो इसमें सर्दी और लूज मोशन का बीमारी आता है।
2: कैसे परख करेंगे
3: वो सर? जब रात में हेलिएगा फार्म में ना, तो इन लोग जिस प्रकार से आदमी जिसने सर्दी होने के बाद करते हैं, उस प्रकार से इन लोग की भी आवाज खच खिच का आवाज आने लगेगा। अच्छा, तो जिससे पता चलता है कि सर्दी हो गया है, और पकड़ करके उन लोग के नाक पे जब चिपिएगा तो नाक से पानी भी आने लगता है, मतलब देखने का तरीका है, और उनकी आवाज से भी पता चल जाता है। हम लोग इतना मतलब काम करते हुए हो गए हैं कि उसकी आवाज से पता चलता है जुकाम हो गया है इन लोगों का, और पतली बीट तो ऐसी उन लोगों बीट देख के पता चलता है कि बीट पतली हो गई है, लूज मोशन हो गया।
2: उसके लिए दवा?
3: हाँ, दवा आती है सर उसके लिए, और नॉर्मल भी दवा से भी हो जाता है, आदि गुड़ वगैरह डबका के देने से भी, 2-3 टाइम देने से भी हो जाता है, और उसका एंटीबायोटिक दवा आती है, उसको भी 1-2 टाइम देने से सही हो जाता है।
2: गुड़ वगैरह कैसे देते हैं?
3: गुड़ को उसको गर्म करके सर, आदि गुड़ को जिस प्रकार से चाय नहीं बनाया जाता है उसी प्रकार से उसको खौला करके दे दिया जाता है पानी में, करके
2: पानी में
3: जी।
2: तो ठंडा हो जाता होगा?
3: गर्म में हल्का दिया जाता है, और हल्का गर्म पी लेते हैं उन लोग, ऐसा नहीं है कि जिस पर मतलब हल्का गर्म आता है तो उन लोग पी लेते हैं। उसमें गुड़ हो गया, मरीच हो गया, और आदि हो गया, इसको ऐसे में कूट करके खल में डाल करके और गुड़ में डाल के डबका करके,
2: अच्छा,
3: और खूब बढ़िया 10-15 लीटर पानी में घोल बना दिया जाता है, हल्का गर्म रहता है, और उसको पानी के बर्तन में डाल दिया जाता है और उसको पी लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो हर मौसम परिवर्तन में दिया जा सकता है?
3: हाँ, हर मौसम परिवर्तन में इसको दिया जा सकता है, इससे फायदेमंद है। अगर नहीं भी बीमारी है तब देंगे तो उसे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये तो नेचुरल ही तो दवा हो गया उसमें।
2: कितने दिन के हो गए हैं
3: ये सर? 90 से 95 दिन के अभी सब मुर्गा मुर्गी हैं सर।
2: तो 1 किलो से ऊपर दिख रहा है?
3: हाँ, 1 किलो 900, 1100, 125 किलो तक है इसमें, मतलब 900 ग्राम से लेके 1300 ग्राम तक इसमें मुर्गा है, और मुर्गियाँ हैं 900 से किलो भर।
2: तो मुर्गा मुर्गी दोनों बराबर हैं का?
3: हाँ, वो मिक्स वाला ही है सर, मुर्गा मुर्गी दोनों है इसमें।
2: हाँ,
3: तो मुर्गी का वेट कम है और मुर्गा का वेट ज्यादा है अभी।
2: चूजे कहाँ से लाते हैं?
3: ये

0: जी सर, बहुत जगह से मिलते हैं। अब तो हम लोग को सोनभद्र जिला राउटसगंज में ही चूजा निकलने लगा है छोकर के।
1: अच्छा,
0: बनारस से भी आ जाता है, बंगाल से भी आ जाता है।
1: सोनाली वाला?
0: जी जी
1: हाँ,
0: सोनाली का चूजा अब हम लोग के अभी वर्तमान में ही राउटसगंज जिले पे इसका बच्चा उपलब्ध हो गया है सर।
1: अच्छा,
0: अभी हम लोग के वहाँ से अंडा का भी डिमांड हुआ है कि आप लोग अंडे दीजिए हम लोग करके निकाल करके, तो वहाँ हम उससे चूजा का भी व्यवसाय करेंगे।
1: अच्छा अच्छा
0: तो ये सब अच्छा धंधा है सर, अगर करना
1: आपके तो बहुत फार्म हो गया है।
0: जी जी जी
1: घूम कर देखा गया कि वहाँ तो बड़ा वाला बना है।
0: जी हाँ, उधर बड़ा बना है, उसमें 5,000 चूजा पड़ता है सर। अभी पहली बार ही लाए हैं सर, वो 34x140 का है सर।
1: फिट?
0: जी, 34 फीट चौड़ा है,
1: हाँ,
0: 140 फीट लंबा है सर।
1: हाँ, वो तो देखिए बहुत बड़ा
0: जी,
1: है।
0: हाँ, जी,
1: बिल्कुल।
0: जी।
1: तो उसमें 5,000 कितना पड़ जाएंगे?
0: हाँ, उसमें 5,000 पड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में पहला बारी डला है उसमें 4,800 चूजा पड़ा है सर।
1: अच्छा अच्छा
0: और उसमें भी 1 महीना डाले हुए हो गया है, मतलब 250 से 300 ग्राम के आसपास उसमें भी वजन आ गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय। तो इसमें चूजा जो यहाँ रावशगंज से आप लेंगे
0: जी जी
1: और बाहर से लाएंगे
0: जी,
1: दोनों के दाम में अंतर पड़ेगा?
0: बस 1-2 रुपए सर, वो जो भाड़ा का खर्चा गिरता है वही बढ़ जाता
1: वही
0: है
1: बढ़
0: सर।
1: जाता है।
0: जहाँ से अवेलेबल हो, मान लीजिए नहीं दे पाएंगे तो अलग देखना पड़ता है, नहीं तो दे देते हैं तो यहीं से हो जाता है। जो नजदीक है उसका भाड़ा कास्ट थोड़ा कम पड़ता है, तो 1-2 रुपए सस्ता पड़ जाता है, 1-2 रुपए महंगा हो पड़ जाता है बाहर वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आहार में का देते हैं?
0: आहार में सर इसके लिए अलग से ही फीड बनता है सर।
1: हाँ।
0: शुरू में तो वही ब्रॉयलर वाला ही दिया जाता है, 2-4-5 बोरी।
1: अच्छा।
0: ताकि जब छोटा छोटा बच्चा रहता है तो उसको अच्छी तरह से पोषक तत्व तो मिले।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: इसलिए वही ब्रॉयलर का ही प्री स्टार्टर दिया जाता है, इसके बाद सोनाली का दाना बनता है, इसका ग्रोवर या सोनाली का स्टार्टर दिया जाता है सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिर बड़े हो जाएंगे? तो
0: बड़े हो जाएंगे, जो अभी तक तो सर वही चल रहा है, सोनाली वाला और ग्रोवर चल रहा है सर। जब अंडा पे जब मुर्गियां आएंगी तब इनके लेयर फीड ही आता है, जिससे उसमें कैल्शियम जो भी उन लोग कितना वसा चाहिए उसका जब मात्रा रहता है,
1: हाँ,
0: उसके हिसाब से दाना को बनाया जाता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इसलिए उसको दिया जाता है ताकि अंडा के उत्पाद जब लेना रहे तो अच्छा गुणवत्ता वाला अंडा दें, अंडा पर्याप्त निकले।
1: अंडा भी होता है?
0: जी, अंडा भी होता है।
1: लगभग कितने अंडे निकल जाते हैं?
0: अभी तो अंडा नहीं निकल रहा है सर, अभी 1.5 महीने के बाद निकलेगा। 5 महीने के बाद मुर्गियां अंडा देना शुरू करती है सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो अभी समझ लीजिए 100 दिन हुआ तो 30-25-150, यानी लगभग 50 से 45 दिन के बाद, मतलब हाँ वही, मतलब 50 से 45, 1.5 महीने के बाद अंडा है, मतलब समझ लीजिए कि दशहरा के बाद अंडा देना शुरू कर देंगी।
1: ये मुर्गियों को बचा कर रख रहे हैं
0: जी? अभी तो मुर्गी, अभी तो ठंडी में सर, अभी तो मुर्गा तैयार हो रहा है तो निकल जाएगा, मान लीजिए जब कस्टमर आएंगे तो। सब बाहर की गाड़ियां बहुत जाते हैं, अभी लोकल में इसको खाने वाले कस्टमर उतना नहीं है।
1: हाँ, हाँ,
0: क्योंकि महंगा पड़ता है इसका कॉस्टली उत्पन्न करने के लिए।
1: हाँ।
0: तो ये सब गाड़ी लगा के बाहर जाता है, तो उसके लिए अभी उधर मंदा चल रहा है तर त्यौहार की वजह से। अभी जैसे ही त्यौहार बीतेगी तो सब मुर्गा उठ जाएंगे सर।
1: इसका दाम कैसे है, रेट का है?
0: रेट सर अच्छा ही मिल जाता है, अभी तो मंदा चल रहा है, नहीं तो अच्छा खासा ही रेट मिल जाता है। खुला तो 500 बिक रहा है।
1: अच्छा।
0: हाँ, खुला जैसे 2-4 कस्टमर आते हैं तो 500 रुपये किलो दिया जाता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: और होलसेल तो बाजार भाव के ऊपर डिपेंड पड़ता है, जब जैसा रहता है 280-300।
1: गाड़ी आती कहाँ से? गाड़ी आती है,
0: गाड़ी सर इसका इलाहाबाद से भी चली आती है, महाराष्ट्र से भी चली आती है।
1: अच्छा।
0: और मुर्गी के लिए असम से लिए, असम और नेपाल।
1: हाँ।
0: नेपाल तो अलग देश हो गया सर।
1: हाँ,
0: असम राज्य से भी, मतलब वहाँ से भी, वहाँ मुर्गी के लिए लेयर बर्ड वहाँ बहुत चाव से बिकता है। जितना
1: अच्छा।
0: आप लेयर बर्ड तैयार करेंगे वहाँ ले जाएगी मुर्गी वहाँ।
1: हाँ।
0: जी,
1: अच्छे दाम पे,
0: अच्छे दाम पे ले जाती हैं सर।
1: हाँ, हाँ, हाँ। ये बिजनेस कब से कर रहे हैं आप?
0: ये बिजनेस करते हुए सर अभी हम लोग सभी भाई लोग मिलाकर लगभग 5-6 साल तो हो ही गया सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: इसका हम लोग कहीं से ट्रेनिंग नहीं दी है, हम लोग खुद करके इसी से ट्रेनिंग दे करके इसी से परिपक्त हो
1: गए,
0: क्योंकि काम को ही सिखाता है।
1: तो ये अभी तक आप कितने हैं फार्म?
0: अभी तक तो सर अभी हमारा, हम मान लीजिए हम लोग तो 5-6 भाई हैं, जान ही रहे हैं आप लोग।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: हम लोग 5 भाई इस व्यवसाय में लगभग कार्यरत हैं।
1: हाँ।
0: और सभी भाई के पास लगभग 5,000 से 6,000 बर्ड्स के फार्म है, समझ सकते हैं कि कितना बच्चा पड़ता होगा। 5-6 हजार बर्ड्स पालन करने पर सभी भाइयों में फार्म है।
1: हाँ, ये तो देखिए 9 या 10 है ऐसा?
0: जी हाँ, छोटा हाँ? बड़ा करके लगभग 8-9 फार्म हो चुके हैं सर।
1: 9? क्योंकि जिन्हें अभी बहुत लंबे चौड़े में है निश्चित रूप से। अच्छा, इसमें आमदनी का ऐसा
0: सर? आमदनी अब तो ये जान ही रहे कि 5-6 महीना में इसमें निकलता है, तो ये है कि मतलब पर मंथ की रेशियो अगर देखा जाए तो 18 से 20 हजार रुपए छोड़ देता है सर।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो और देसी मुर्गियां हैं तो इसमें फुल टाइम टाइम भी नहीं देना पड़ता है, अपना खेती का भी काम हो जाता है, ये भी हो जाता है। और ब्रॉयलर में तो उसमें 2400 घंटा टाइम देना पड़ता है उसमें देख रेख करना, लेकिन इसमें देसी की तरह ही ध्यान देना पड़ता है, पार्ट टाइम में काम हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी।
1: मतलब इसमें उतना
0: बहुत आराम से सर।
1: तो श्रोताओं देखें, ये बसंत कुमार जी कादल से हैं, और निश्चित रूप से देख करके आपको लगेगा कि कोई काम हो रहा है।

0: और अगर करना चाहें व्यक्ति तो उसमें जुड़ें और कम से शुरुआत करके धीरे धीरे अनुभव भी होता जाएगा और उस संख्या बढ़ाते जाएं और अंतोगत्वा अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और इनके बीट से जो है कि खेती बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उर्वरा शक्ति बना रहेगा। और आप लोग के मकई भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा बाल दिया है, इसी का कमाल है। तो इतना अच्छा जानकारी देने के लिए बसंत कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नंदू भैया,
2: अचलो भैया,
1: देखा भाई बातचीत भर पोल्ट्री फार्मिंग में का सामयिक कार्य हो सकेला, ये विषय पे बसंत कुमार भैया से अपन भोला भैया के बात बत कही सुनत वाले। और देखा ये बात बत कही से ये निचोड़ निकलल कि चाहे पशुपालक हो चाहे अपने किसान भैया लोग हो, हर तरीके से अपने आमदनी का साधन जुटावे के चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, विविधीकरण अपनावे के चाहिए। और देखें, विविधीकरण तो ही ऐसन बा चलो भैया कि मतलब आपन भी 4 पैसा भी निकलत बा, और
1: बिल्कुल।
2: भैया ओकर बीट से जोन बा अपन खेती के लिए जोन बा खाद भी होत
1: जैविक
2: बा।
1: खाद हो जाएगा। तो यही तरीके से देखा अभी चला चलाओ तो बताऊलन कि देखे आप मकई भी लगौले हुए, एक मतलब पशुपालक हो के भी जनबा खेती किसानी अपन छोड़ ले नहीं, तो मकई में का आज का भाव बा और कहाँ का भाव आपके मिलल बा वो बता दें आप।
2: तो देखें, आज रावर्स के मंडी के ताजा बाजार भाव बा, और हमेशा के तरह बाबूलाल मौर भैया के पाती पहुंचत
1: बिल्कुल,
2: रहला,
1: तो बिना
2: आज
1: देर के
2: भी
1: लिए बताए
2: पहुंचल
1: प्रति
2: बा। और देखें, मकई बा 800 से 1,000 रुपया
1: क्विंटल।
2: प्रति कुंटल, और लाल आलू 1,100 से 1,200, सफेद आलू 900 से 1,000, और प्याज रहल 4,000 से 4,200 रुपया, टमाटर रहल 2,500 मतलब 2,500 से 2,600, बोरा रहल अपन 3,000 से 3,200, कोड़ा रहल 1,200 से 1,500, अरुई रहल अपन 2,500 से 2,600, बंडा 2,200 से 2,500, लंबा वाला बैगन रहल 2,500 से 2,800, गोल वाला रहल 3,500 से 4,000, और परवल रहल अचलो भैया 7,000 से 8,000, लौकी रहल अपन 1,800 से 2,000, करेला 1,500 से 1,800, भिंडी भी रहल 1,800 से 2,000, नेनुआ 1,800 से 2,000, कुनूरू रहल 2,000 से 2,200 रुपया, और मूली रहल 3,500 से 4,000, हरा मिर्च रहल 4,000 से 4,500, लहसुन रहल 10,000 से 12,000, धनिया हरा धनिया रहल 8,000 से 10,000, पालक रहल 5,000 से 6,000, अदरक रहल 6,000 से 7,000, सूरन 4,000 से 4,200 रुपया, और खीरा रहल 2,200 से 2,500 रुपया, और फूल गोभी रहल अपन 2,500 से 3,000 रुपया, और पत्ता गोभी रहल 2,200 से 2,500 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहल भैया अपन 500 से 600 रुपया सैकड़ा।
1: सैकड़ा
2: तो ई रहल
1: तो
2: आज के ताजा बाजार भाव रावर्सगंज मंडी के बाबूलाल मौर्य भैया के। और देखें, और जानकारी
1: दे सबके जोन बा धन्यवाद दिया जाए, लेकिन जोन बा एगो दादरा के माध्यम से जोन बा हमरे बीच में आयल हुआ कमला सिंह यादव भी और संगाती लोगन, उनका जन्म दादरा हमन सुनल जाए।

0: चलो भैया
1: आनंद भैया।
0: देखें इसमें अपन देखें कल जला ना कि भैया जब स्वच्छता अपन अपनावल रही यानी कहे के मतलब बाकी देखें हर चीज के जोन बा एक सरल तौर से कहल जा सकला कि भैया चाहे अपन पास आस पास होखे चाहे कौनो चीज में स्वच्छता के बात होखे चाहे
1: खान पान
0: भैया
1: के स्वच्छता की बात
0: खान
1: हो,
0: पान के बात होखे।
1: जल के स्वच्छता की बात हो, कहे के मतलब भैया देखे इसमें बरसात का मौसम रहल और बरसात होखला के बाद बहुत भयंकर तौर से कहला कि बरखा भइल, चाहे अपने जनपद की बात करो चाहे चाहे आसपास के जनपद की बात, तो ओमेन जो वर्षा बुनी के बाद जन बा जल जमाव के कारण या नाली में चोक हो जात बा ओकरे वजह से घरे में भी जन बा बदबू आवे लगत बा, तो ये वजह से देखा बीमारी भी बहुत तरीके से आज देखा कहीं भी मेडिकल स्टोर से जो है देखा लाइन पर लाइन लगल बा।
0: भैया देखें यही से अपन कहल जाला ना कि भैया अपन स्वच्छता अपनावल जाए बीमारी भगावल जाए और स्वस्थ तन पावल जाए, स्वच्छता अपन अपनावल जाए। कहे के
1: बिल्कुल
0: मतलब ई बा कि जहाँ भी अपन रहा आस पास में रहा नाली में भी पानी न जमा होके घास फूस न रहे।
1: न रहे और ऐसने में अपने पशु चौवा के भी ध्यान रखे के हुई, काहे कि देखा यही से विषय से जुड़ल हमारे का कल का कार्यक्रम बा हेलो किसान के माध्यम से लंपी स्किन डिजीज जागरूकता ही बचाओ, ये विषय पर विशेषज्ञ भैया डॉक्टर अनुभव सिंह जौन की पशु चिकित्सा अधिकारी हों चौपन ब्लॉक का, वो आकर के अपने किसान भैया लोगों के पशुपालक भैया लोगों के जवाब सवाल का जवाब दिए हैं, तो आकर के हमन भी सुनल जाए। लेकिन आज चले का समय हो गए बा, हमन भी अपन यहाँ से बोरिया बिस्तर उठावल जाए
0: और
1: अपन लाइटर
0: चलल
1: उठावा
0: जाए। तो सब पंचन के राम राम,
1: राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: सरला वहिनी,
2: हाँ जी आज भैया,
1: देखो हम पंच जब खेती करी थे
2: हाँ,
1: तो हमें एक समस्या आवत है कीड़ा मकौड़ा की। तो सबसे पहले दिमाग में यही आवत है कि लाओ कीट नाशक लाए के आवा जाए और ला के फसल पर डाल दी जाए, सब कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाए।
2: मतलब कि रियाज भैया, हर समस्या का समाधान भाई दवाई ही नहीं होते कि अपने फसल पर दवाई छिड़काव कर दो और कीड़ा मकोड़ा मर जाए।
1: हम पंचन का चाहिए कि सबसे पहले जैविक विधि के उपयोग करी, कहे से कि जब हम पंच रसायन के इस्तेमाल करी थे तो वह से न सिर्फ फसल के गुणवत्ता प्रभावित हुआ था बल्कि मित्र कीट जो उन फसल के उत्पादन बढ़ावे में मदद कर रही थी उन्हों के खात्मा हो जाते हैं।
2: और एक साथ ही बात का हम सबका ध्यान रखना चाहिए कि अगर नहीं फायदा करे तब कहूँ रसायन का प्रयोग करे चाहिए।
1: जो अपने कृषि वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने बताओ।

0: थी कि समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के अगर हम पंच प्रबंध कर ली तो उसे जो है रसायन से मुक्ति मिल जाता है और अपन फसल के गुणवत्ता भी अच्छी हुआ है और अपन माटी जोन रहा है वह अच्छी हुआ है। अगर खेती पाती करी थे तो उसे जो संबंधित खबरें रहा थे उनका भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी
1: तो
0: है।
1: भैया जान लीन जाए आज की खबरें।
2: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से एग्री दर्शन यूपी पोर्टल पर आवेदन कर निःशुल्क दलहन मिनी किट योजना का लाभ उठाने की अपील की है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में चना, मटर और मसूर के 2,09,378 मिनी किट के लक्ष्य के मुकाबले 1,88,045 पैकेट की बुकिंग हो चुकी है। इस तरह दलहन मिनी किट वितरण में 90% उपलब्धि हासिल की गई है। वहीं तोरिया मिनी किट के 30,000 पैकेट के लक्ष्य के मुकाबले 23,963 पैकेट की बुकिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में बीमित किसानों की संख्या बढ़कर 23,54,000 हो गई है। केसीसी के सापेक्ष फसल बीमा कवरेज भी बढ़कर 84% पहुंच गया है। वहीं खरीफ 2026-27 में 85,783 करोड़ रुपए के फसली ऋण लक्ष्य के मुकाबले 31 अगस्त तक 58,103 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण किसानों को वितरित किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने किसानों से अधिक संख्या में दलहन मिनी किट के लिए एग्री दर्शन यूपी पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है।
0: सरला बहनी,
1: हाँ भैया,
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में तिलहन का भी उत्पादन करी थे तो कहे ना आज की बातें में तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन पर एक जानकारी ले ली जाए डॉक्टर अनूप कुमार दीक्षित भैया से।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली और तिल की फसल आपके खेत में खड़ी है, इसमें सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार दीक्षित साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, मुख्यतः हमारी मूंगफली और तिलहन की दो फसलें हैं और मूंगफली में इस समय फूल आने का और फली बनने का दोनों का समय है। इस समय मिट्टी में उचित नमी बनाए रखना अति आवश्यक है, साथ साथ में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।
3: डॉक्टर साहब बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं तो खरपतवारों का प्रबंधन भी इस समय करना है क्या?
4: देखिए खरपतवारों का नियंत्रण शुरुआत के अगर हम किसी भी फसल में तो शुरुआत के 30 से 35 दिन तक अगर हम खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मूंगफली में इस समय फूल आने और खूंटी बनने का समय है, इस समय हमको खेत में कम से कम आवाजाही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खरपतवार को के लिए अगर हम निराई गुड़ाई करेंगे तो उसके खूंटी बनने पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कम से कम हमें काम करें।
3: तिल और मूंगफली की फसल दो मुख्य तिलहनी फसलें इस समय खेत में है तो फसल की भूख मिटाने के लिए फसल की इस अवस्था पर कोई पोषक तत्व का प्रबंधन भी करना है?
4: हाँ, एक्चुअली में दोनों फसलें अपने उत्तर प्रदेश में वर्षा आधारित हैं और वर्षा आधारित होने की वजह से अगर हमको पानी की कमी है, क्योंकि पूरे पोषक तत्व तो हमको बुआई के टाइम ही देने होते हैं, बेसल डोज देने होते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर हमको फसल थोड़ी पीली दिख रही है, क्योंकि मूंगफली जो है एक दलहन परिवार की फसल है तो उसमें तो नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं रहती है, मगर तिल हमारी फसल है उसमें अगर 2% यूरिया का हम घोल का छिड़काव कर दें तो हमारी उपज में आशातीत वृद्धि पाई जा सकती है।
3: यानी 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब।
4: बिल्कुल,
3: आजकल बहुत सारे जल विलेय उर्वरक आ गए हैं, क्या इनका प्रयोग भी फायदेमंद होगा?
4: जल विलेय मतलब वाटर सॉल्युबल, तो जो भी हम अगर स्प्रे जो भी करते हैं तो वो हमारे जो पुराने जो रासायनिक खाद हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत अच्छे रहते हैं, तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई हानिकारक कीट और बीमारियां लगती हैं, तो उनका प्रबंधन फसल की इस अवस्था पर कैसे हो?
4: रोग और कीट दो मुख्य रूप से हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, तो जैसे अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में अगर बीमारी की बात है टिक्का रोग होता है, टिक्का रोग की रोकथाम करना बहुत जरूरी है, जिसमें पत्तियां नीचे से पीली पड़ने लगती हैं। सबसे पहली बात है हम किसी भी रोग या कीट के लिए रासायनों पे सबसे बाद में जाएं, सबसे पहले हमको जो कृषि संबंधी जो कृषिकार हैं, चाहे हम फसल चक्र को अपना करके या साफ सफाई वाली खेती को करके, अब जैसे हमको गर्मी में जुताई अवश्य करनी चाहिए जिससे हमारे जो रोगों के जो अंडाणु हैं या हमारे कीटों के जो अंडे वगैरह हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं। मान लेते हैं अब हमने बुआई कर ही जब दी है और टिक्का रोग हमारे खेत में आ गया है, तो ऐसे में अब हमको रसायनों पे जाना पड़ेगा। पहली बात तो हमको नीम तेल, उसका 1% नीम तेल का हमको स्प्रे करना चाहिए, और दूसरा अगर हमारे पास कार्बेंडाजिम 50% वाटर सोल्यूबल और प्लस ये मैनकोजेब 75% का, इसको जो है दोनों अलग अलग आते हैं, तो हम दोनों में से कोई एक कर लें, या तो हम कार्बेंडाजिम कर लें 50 WP, इसको हमको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, या मैनकोजेम 75% का जो आता है उसको हम 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो हम इसको रोकथाम कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जो भी हानिकारक कीट और बीमारियां हैं उनके जैविक उपाय भी तो बहुत हैं।
4: हाँ, जैविक उपाय भी हैं, जैसे बीटल का उपयोग है वो कर सकते हैं, और इसमें जैसे व्हाइट ग्रब भी एक बहुत बड़ी समस्या है,
3: सफेद ग्रब।
4: हाँ, सफेद गिडार जिसको बोलते हैं वो, और दीमक, ये दोनों, दीमक वहीं पे ज्यादातर इसका दुष्प्रभाव देखा गया है जहां पे नमी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में एक तो हम खेत में नमी बनाए रखें, दूसरा क्या है कि समय से हम खुदाई भी कर लें, क्योंकि अगर हमारा समय से अगर हमने मूंगफली खुदाई नहीं करी तो वहां पे दीमक के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इमिडाक्लोप्रिड ये रसायन है, इसकी हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं 17.8 जो SL है उसकी हम 60 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, तिल की बात करें तो उसमें भी कई हानिकारक कीट और बीमारियां लगती हैं।
4: हाँ, उसमें भी जैसे पत्ती और फल की सूंडी कीट है तिल में, दूसरा है जयसिड है, इनकी रोकथाम के लिए पहले मैंने बताया कि या तो हम फसल चक्र अपनाएं, और अब हमारी फसल लगी हुई है तो इसमें हम डाईमेथोएट नाम की एक दवा आती है जिसको 30% EC वाला फार्मूला ले लें, और उसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम अप्लाई कर, एक एकड़ के लिए हमको करीब 200 लीटर पानी में इस 400 ml दवा को घोलना पड़ेगा और उसका हम स्प्रे कर दें, तो इन कीटों से रोकथाम हो सकती है।
3: डॉक्टर साहब, कभी कभी तिल की फसल में फाइलोडी की समस्या आती है।
4: हाँ, फाइलोडी भी एक तरह का जो है विकार है, और जो हमारी फलियां होती हैं या पौधे का ऊपरी जो है गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, जो हमारी उपज को सीधे तौर पे प्रभावित करता है, तो इसके लिए भी हमको इसके त्वरित निदान की आवश्यकता जरूर पड़ती है।
3: डॉक्टर साहब, जहाँ खेत खाली रह गया है, खरीफ फसलें कोई नहीं बो पाए हैं किसान भाई बहन, और आगे रबी में समय से गेहूं की बुआई करनी है, तो इस बीच में भी कोई तिलहनी फसल उगा सकते हैं?
4: जितनी भी तिलहनी फसल है उसमें से तोरिया एक ऐसी फसल है जो ये रबी और खरीफ के बीच में एक बांध का काम करती है। तो तोरिया की कुछ वैरायटी है, जैसे ये हमारा अगर गेहूं अगर हमको दिसंबर में बुआई करना है तो अभी सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर के अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक तोरिया की कुछ वैरायटी, जैसे भवानी करीब 75 से 80 दिन में पक जाती है, PT 303, PT 36, टाइप 9, ये हमारी करीब 90 से 95 दिन में पक जाती हैं। तो तोरिया की इन प्रजातियों का हम अगर करें तो हमारी रबी के पहले एक तिलहन की अच्छी उपज हम ले सकते हैं,
3: लेकिन जितना जल्दी से जल्दी बुआई कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
4: बिल्कुल, इसीलिए बताया कि ये भी सितंबर चल रहा, तो कोशिश करें कि हम बुआई कर लें, और क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो एक तो क्या होगा कि हमारी रबी की फसल समय से बुआई नहीं हो पाएगी, दूसरी क्या है इनकी उपज पे भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी फसल की समय से बुआई सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी उपज के लिए।
3: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
4: हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9451753219, 94-51-75-32-19, 94-51-75-32-19।
3: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
4: किसान भाइयों, चूंकि मैंने बताया कि अभी तोरिया की फसल की बुआई करनी है, और बुआई के 15-20 दिन के अंदर बिरलीकरण कर दें और तोरिया की बुआई लाइन में ही करें, 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधी दूरी को मेंटेन करें, और उसके लिए बिरलीकरण करें अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, और बीज शोधित करके ही डालें। आप बावेस्टीन 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको शोधित कर लें और उसकी समय पे बुआई कर लें।
3: डॉक्टर अनूप कुमार दीक्षित साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रियाज भैया।
4: हाँ सरला बहन।
3: बात बत कहे तो बहुत होता है।
4: हाँ।
3: और यू मन कहा थे कबहों कबहों ना कि जब काम कर लियो तो गौनाई जरूर सुन लेन जाए।
4: बिल्कुल गीत गौनाई ऐसी चीज है कि हम पंच काम जब कहे जायी थे और गौनाई सुने जायी थे ना तो आपन काम और नीके तीना से हो जाते।
3: तो अपन पंच भैया भी इंतजार करत है
4: तो देखो सुना जाए शंकर यादव उनके साथी की आवाज में। खेमटा गीत है मन न भावे बलम परदेसिया।
5: अरे दिलवा के बतिया, अरे दिलवा के बतिया, मन ना भावे बलम पर।

0: रियाज भैया
1: हाँ सर लवेनी।
0: देखो, फसल तो हम सब उगावत हन, है ना, मुला की अगर औषधीय फसल के उत्पादन किन जाए तो कितनी बढ़िया बात है ना। तो
1: बिल्कुल
0: आज के किसान मा औषधीय फसल उत्पादन के बारे में बता रहे हैं अशोक कुमार गुप्त भैया।
1: बिल्कुल, सुना जाए, जानकारी ली जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के बिसवा ब्लॉक के कमुआ गांव, जहां औषधीय पौधों की खेती से जुड़े अशोक कुमार गुप्ता भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। अशोक गुप्ता भैया नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: भैया आप औषधि फसलों की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब इस समय हमारे पास ब्राह्मी बकोपा है, सफेद मूसली है, हल्दी है और अपराजिता जिसको ब्लू पी कहते हैं वो भी है,
2: और तुलसी भी है।
3: तुलसी, हाँ सिंथेसिस तुलसी जो कटिंग से होती है, जो 3-4 साल चलती है बवरती।
2: तो कुल रकबा कितना है औषधि फसलों की खेती का?
3: हमारे पास 7 एकड़ है।
2: 7 एकड़
3: जी।
2: तो कुछ अपनी जमीन होगी, कुछ लीज पर लिए होंगे?
3: हमारे पिताजी की जमीन 2 एकड़ है और 5 एकड़ लीज के लिए है।
2: तो ये औषधि फसलों की खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब करीब 9-10 साल हो गए हैं। आपके आकाशवाणी केंद्र से ही प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम हुआ था, उसी में हमारे पिताजी ने सुना था और फिर उसी से अब हम रबी फसलों की तरफ मुड़े।
2: तो जो भी औषधि फसलों की खेती आप कर रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं?
3: जी।
2: तो कितना कितना रकबा है ब्राह्मी बकोपा का, सफेद मूसली का, अपराजिता का, तुलसी का और हल्दी का?
3: इस समय हमारे पास 1 एकड़ ब्राह्मी बकोपा है और 1 एकड़ तुलसी है और करीब 1.25 एकड़ है सफेद मूसली और 1 एकड़ है हल्दी और करीब हमारे यहाँ का 2.5 एकड़ से कम वो सब अपराजिता, अमरोजा भी 1.25 एकड़ है।
2: तो इस समय औषधि फसलों की खेती में क्या कुछ कर रहे हैं आप?
3: इस समय डॉक्टर साहब ये सफेद मूसली है और ये बकोपा है, इसकी निराई चल रही है और यही आगे की तैयारी खेतों की चल रही, जो कैमोमिल और ब्लूकार्न लगाना है।
2: तो इसकी बुआई और रोपाई करते कब है ब्राह्मी बकोपा की, सफेद मूसली की, अपराजिता और तुलसी की?
3: ये ब्राह्मी की बुआई हमने की थी जून के लास्ट में और ये सफेद मूसली ये भी 15 जून से की थी और ये जो अपराजिता है ये मार्च में नर्सरी पड़ी थी, जो ट्रांसप्लांट किया था हमने अप्रैल में, और ये तुलसी है ये भी जून के लास्ट में हमने लगाई थी और हल्दी पिछले अप्रैल में लगाया था, जो इस साल खो देंगे वही फरवरी और मार्च में।
2: तो फसल कैसी चल रही है?
3: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये हल्दी जो हमारी है इस समय करीब 6 से 7 फीट की हल्दी है, प्राकृतिक विषय हमने की है और जो ब्राह्मी बकोपा है वो भी कम से कम 1.5 फीट की हो चुकी है और सफेद मूसली भी बहुत बढ़िया है और तुलसी भी कम से कम 4-5 फीट की हो चुकी है, राजता भी फूल तोड़ाई चल रही है उसमें भी करीब 10 फीट उसकी 2-3 फीट की चारों तरफ हो चुकी है।
2: तो कब से इनकी कटाई चालू करेंगे?
3: जी ये कटाई इसकी बरसात खत्म हो जाए बस अक्टूबर में करेंगे बकोपा की।
2: और सफेद मूसली कब तक तैयार होगा?
3: सफेद मूसली डॉक्टर इस समय थोड़ा बीज के चक्कर में है, बीज थोड़ा बनाने के लिए इसको करीब 3-4 महीने एक्स्ट्रा रखना पड़ता है जमीन में, क्योंकि बाहर रुक नहीं सकती, वैसे 2 नवंबर के तक में कटाई हो जाती है, लेकिन हमने बीज बनाने का काम तो ये खोजेंगे हम मार्च में।
2: और अपराजिता?
3: अपराजिता डॉक्टर ये बहुवर्षीय फसल है, ये फरवरी में इस साल लगाए हैं, ये चलेगा 3-4 साल।
2: कुल मिला जुला करके आप औषधि फसलों की खेती करके खुशहाल हैं?
3: जी डॉक्टर साहब हम खुशहाल हैं इसलिए क्योंकि हमने जो गाय आधारित खेती की उसमें हम जीवामृत और घन जीवामृत और दसपर्णी अग्न्यास ब्रह्मास्त्र और बीजामृत इसका प्रयोग करके हमने करीब 9 साल से, और जो कुसुम योजना के अंतर्गत हमको सोलर पंप मिला था जो कृषि विज्ञान केंद्र और KVK और आकाशवाणी से जानकारी मिली हमको, इससे लेके फिर हमने जब से किया तब से हमारा जो आज किसान लागत से परेशान है वो हमारी लागत जीरो हो गई।

0: वही निराई गुड़ाई और बीज बीज एक बार ले लिए, फिर बीज भी अगले सैकड़ों किसानों को हम दे सकते हैं, लेकिन हमको खरीदना नहीं पड़ता। इसी से इससे हम मान के चलो ये औषधि फसलें और प्राकृतिक बिखरे खेती, इससे हम बहुत खुश हैं।
1: तो अलग से फसल की भूख मिटाने के लिए रासायनिक खाद नहीं देते हैं?
0: नहीं, हम इसको करीब 9 साल से हमने त्याग दिया था, कुछ नहीं डालते, बस यही जीवामृत और घनजीवामृत और ये दशपर्णी अग्न्यास्त ब्रह्मास्त्र और बीजामृत, इसी से पूरा हमारा जो फसल अवशेष होते हैं उसी का आच्छादन करके फसलों का, जैसे फसल में इसी से पूरा हो जाता है प्राकृतिक रूप से।
1: तो एकड़ पीछे कितनी लागत गिरती है? जो भी औषधि फसलें हैं उनकी अलग अलग लागत होगी, ब्राह्मी, बकोपा, सफेद मूसली, अपराजिता, तुलसी और हल्दी की, और उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और आपका मुनाफा एक साल में होता कितना है?
0: डॉक्टर साहब, मुनाफा का ये जैसे हर फसलों का अलग अलग होता है, जैसे कैमोमिल ब्लू कार्न है, इसमें करीब हमारा 1.25 लाख रुपए हो जाता है, तो करीब 20 से 30 हजार रुपए एकड़ में लग जाते हैं, तो उसमें मान के चलो 1 लाख के आसपास हमारा बच जाता है। और ब्लू कार्न भी इसी रेशियो में जाता है, 5 साढ़े 5 महीने की फसल है, और ये बकोपा भी लगभग इसी रेशियो में जाते हैं, और ये सफेद मूसली का खर्चा जो इसमें इसमें ज्यादा था, तो इसमें अगर रेट मिल जाए तो ये 1 से 1.5 लाख के ऊपर भी निकल जाता है। इसी तरह हर चीज हर फसल का अलग अलग होता है।
1: तो पूरे साल में कितनी बचत हो जाती है जो 7 एकड़ औषधि फसलों की खेती है उससे?
0: हमारे डॉक्टर करीब 4-5 लाख रुपए बच जाता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सब बाहर, तो उसमें उनका खर्चा निकल जाता है, और बाकी 2-4 लाख रुपए इधर उधर से बच जाता है, बस इतना हमारा, हम इससे खुश हैं। बाकी किसान सबसे ज्यादा परेशान है लागत के पीछे, वो लागत हमारी लगभग जीरो है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: डॉक्टर साहब, हमारा FPO भी है जो विश्वानंदाता के नाम से है, और बाकी हमारे पास हम जिले में हमारा फार्मा मास्टर ट्रेनर का मतलब हमको ट्रेनिंग मिली थी, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ बाहर से किसान भी आते रहते हैं, तो हमको हम उन्हीं उनको इसे यही बताते हैं कि प्राकृतिक विधि से औषधीय फसलें या कोई भी फसल करें जो उसमें लागत कमाए कम से कम, जो बीज अपना रखो, खाद अपनी रखो, और पानी के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और हर चीज मतलब अपनी बनाएंगे तो उसमें खर्चा कमाएगा तो किसानों का फायदा होगा। तो यही हमारा निष्कर्ष है कि मतलब कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जाए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9453 70 79 87, 9453 70 79 87, 9453 70 79 87।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: डॉक्टर साहब, हम यही कहेंगे किसान साथियों से कि लागत जो है वो लागत को ध्यान में रखते हुए बीज खरीदते हैं, वो भी अपना बनाए, और खाद खरीदते हैं उससे प्राकृतिक विषय जीवामृत और घनजीवामृत बनाए, और जो आज समस्या आगे आ रही है कि पानी और खाद और ये सब समस्याएं जमीन में देखे, तो आगे पीढ़ी को जवाब देना है कि अगर इसी तरह करते रहेंगे तो आगे पीढ़ी आने वाली क्या करेगी, तो उससे यही जो प्राकृतिक विषय है खेती, उसी में किसान और सबकी सबकी भलाई है, तो इसी में प्राकृतिक विधि से ही खेती करें और अपना बचाएं।
1: अशोक कुमार गुप्ता भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। आप 2 एकड़ अपनी पुश्तैनी जमीन और 5 एकड़ लीज पर लेकर के 7 एकड़ में औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मी, बकोपा, सफेद मूसली, अपराजिता, तुलसी, हल्दी और ब्लू कार्न की खेती कर रहे हैं, और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: परंतु सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। सरला बहनी।
5: हाँ भैया।
4: देखो अपन जो खेती पाती है वो मौसम पर आधार

0: हरित राहत है, तो आओ जान लीन जाए कि मौसम के क्या मिजाज है।
1: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से जो प्राप्त जानकारी है वो यह प्रकार से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज यानी 22 तारीख का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 23 तारीख से 28 तारीख तक संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने की संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने की संभावना है।
0: यूँ तो रहा मौसम के हाल। अब अपने पंचन से हम ये आग्रह करबे कि आपन कार्यक्रम कैसे लागत है, इके बारे में सुझाव जरूर दिए। तो इके लिए कार्यक्रम के पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड 226001। इके अलावा अपने पंच ईमेल के माध्यम से भी अवगत करवा सकत हैं। तो ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com।
1: और भैया अब घरे चले के बेरिया हो गए हैं तो
0: बिल्कुल घड़ी इशारा कर रही है कि अपन बुरिया बिस्तरा उठावा जाए और पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान की तारीखें घोषित। 23 और 16 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअली लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की रखी आधारशिला। नई वेबसाइट का किया शुभारम्भ। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में परखी चुनावी तैयारियां। कहा, 2027 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की रिक्त होने वाली सीटों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक सीटों पर चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 23 अक्टूबर को जबकि वोटों की गणना 27 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सदस्यों का कार्यकाल आगामी 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 6 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 16 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से प्रारंभ होगी। निर्वाचन प्रक्रिया को 19 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा से जुड़े चारों स्तंभ, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को एक साथ जोड़ने वाला विशेष अवसर है। यहां 3,567 लोगों का चयन कर उनके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है।
2: ये केवल एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है। 3,567 ऐसे लोगों का चयन करके जिनके हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक गुरुत्वर दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आज आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 साल में 9,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
3: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
4: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
3: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
5: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे।
3: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जनभवन लखनऊ स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में इंटरनेट के फायदे और नुकसान विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं उन्नाव के विकासखंड बांगरमऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोस्टर निर्माण स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन

0: सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहे। श्री नबीन ने सहारनपुर में पश्चिमी यूपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। सहारनपुर में मीडिया से बातचीत में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखकर विश्वास है कि वर्ष 2027 में प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
2: कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आज हर जगह जब कार्यकर्ता के साथ जनता भी सड़कों पर नजर आई तो स्पष्ट दिखा कि किस प्रकार से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति किस प्रकार से सभी लोग मिलकर आगे आए हैं। और मुझे लगता है कि 2027 के मिशन को हम पूरा करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने राज्य के 6 जिलों की 12 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल अनुमानित निवेश 1663.85 करोड़ रुपए है। इनमें लखनऊ में 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वहीं गाजियाबाद की 3, हापुड़ की 2, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर की 1-1 परियोजना शामिल है। प्रदेश में कल फिर से बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। 25 और 26 को कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान की तारीखें घोषित। 23 और 16 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअली लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की रखी आधारशिला। नई वेबसाइट का किया शुभारम्भ। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में परखी चुनावी तैयारियां। कहा, 2027 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: एक सौ 102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत है सोनू निगम और महालक्ष्मी की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम है पंटी और बबली।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म कयामत से कयामत तक में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वास्तव। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत तैयार किया था जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म सागर का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत आरडी बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म फना का ये गाना, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने, आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: फिल्म फना के इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म दीवानगी से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत को लिखा है सलीम बिजनौरी ने और संगीत दिया है स्माइल दरबार ने।

कभी खुशी कभी गम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं। उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित

0: व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वही तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूठी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वही निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने यह बात कही।

0: ही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट

0: ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Center inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
3: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Sahab ki world's tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार विल गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। आई एम गिविंग अ कॉल टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेलेक्ट

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

कमाल अमरोही के लिखे इस गीत को नौशाद के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी पाकीज़ा। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म दो बदन में। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार रवि।

फिल्म दो बदन के इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म धर्मात्मा से। गीत इंदिवर का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अलका याग्निक और उदित नारायण को अभी आप सुन रहे थे फिल्म साया में। गीत अनु मलिका था और संगीत M.M. क्रीम का। आइए अब सुनते हैं अब्बास कटका के लिखे इस गीत को शान और महालक्ष्मी की आवाजों में। संगीत दिया है संजीव दर्शन ने और फिल्म का नाम है रिश्ते।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जाबाज का ये गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और आवाजें थीं किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की। आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म कांटे में। गीत देव कोहली का है और संगीत आनंदराज आनंद का।

0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी झांसी की है।
1: पहले सामुराई यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां। सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22।
2: खेल दर्पण में आज आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति के साथ मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त दीपक शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। वीरों और पराक्रम की पावन धारा उत्तर प्रदेश का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले आंखों के सामने चमकती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वह दिव्य छवि जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास रच दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का वही निडर जज्बा और कभी न हारने की भावना हमारे राज्य की मिट्टी के कण कण में रची बसी है। खेल का मैदान हो या जीवन की जंग, यही जुनून हमें हर चुनौती से टकराना सिखाता है। श्रोताओं, झांसी की इसी वीर भूमि ने देश को एक और अनमोल रत्न दिया, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की उसी प्रेरणा को अपने स्टिक में समेटकर मेजर ध्यानचंद ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों पर भारत का परचम लहराया। आज जब उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनके भीतर रानी लक्ष्मीबाई का वही अटूट साहस और दद्दा ध्यानचंद का वही समर्पण साफ नजर आता है। श्रोताओं, आइए इसी प्रेरणादायक सोच के साथ शुरू करते हैं आज का खेल दर्पण, जहां हम नजर डालेंगे राज्य की तमाम छोटी बड़ी खेल गतिविधियों, खिलाड़ियों की उपलब्धियों और भावी प्रतियोगिताओं पर, और साथ ही बात करेंगे झांसी के उभरते हुए खिलाड़ियों की।

श्रोताओं, राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी झांसी की सोनिया कुशवाहा ने 7,077 मीटर ऊंचे माउंट कुन का सफल आरोहण किया। उन्होंने 7 सितंबर को सुबह 7:30 बजे शिखर पर पहुंचकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। सोनिया अपने साथ हॉकी स्टिक लेकर गई थी, जिसने उनकी इस उपलब्धि को और खास बना दिया। श्रोताओं, सोनिया ने 28 अगस्त को इस अभियान की शुरुआत की थी। करीब 10 दिनों तक चले इस अभियान में हर कदम चुनौती से भरा रहा। -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में चढ़ाई करते हुए एक दिन अचानक तूफान आ गया। तूफान ने अभियान की रफ्तार रोक दी और उन्हें कैंप 2 में रुकना पड़ा। मौसम सुधरने के बाद सोनिया फिर आगे बढ़ी। आखिरकार उन्होंने माउंट कुन के शिखर पर तिरंगे के साथ हॉकी स्टिक लहराई। श्रोताओं, सोनिया की ये उपलब्धि असाधारण मानी जा रही है। उन्होंने हिमालय की 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक अपनी हॉकी स्टिक साथ पहुंचाई। सोनिया दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने 7,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हॉकी स्टिक को शिखर तक पहुंचाया है। ये प्रयास खेल और साहस का अनोखा मेल बन गया। उनकी ये उपलब्धि झांसी के खेल इतिहास में पहचान बनाने के साथ महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी संदेश है।

श्रोताओं, अयोध्या में हुई प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झांसी मंडल उपविजेता रहा। फाइनल में झांसी का सामना लखनऊ से हुआ, जिसमें उसे 2-5 की हार का सामना करना पड़ा। झांसी के लिए दोनों गोल साजन ने किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा संकुल डाभा सीमेर में ये प्रतियोगिता 6 से 11 सितंबर तक आयोजित की गई। फाइनल में झांसी मंडल की ओर से पहला गोल हुआ, लेकिन टीम इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी। बाद में लखनऊ ने वापसी की और 5-2 से जीत दर्ज की। क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी करमवीर सिंह ने झांसी मंडल के उपविजेता रहने पर उन्हें बधाई दी।

0: श्रोताओं, भारतीय पैरा निशानेबाज भक्ति शर्मा ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीता है। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में भक्ति ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के क्वालिफिकेशन राउंड में 565 का स्कोर बनाकर जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। एक अन्य भारतीय निशानेबाज सृष्टि अरोड़ा 5वें स्थान पर रही। तो श्रोताओं, ये थे कुछ खेल समाचार। तो आइए अब आपको ले चलते हैं झांसी के क्षेत्रीय खेल कार्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां हमने बातचीत की क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री करमवीर सिंह जी से। हमारे साथ उपस्थित हैं झांसी मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री करमवीर सिंह जी। करमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम खेल दर्पण में। सबसे पहले हमारे प्रदेश भर के श्रोताओं को बताएं कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कर्म भूमि रहे झांसी स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालना आपके लिए कितना गर्व और जिम्मेदारी भरा अनुभव है?
1: सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर जब मैं यहाँ अपना कार्यभार ग्रहण किया तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बहुत सुना था। उनको तो मैं देखा नहीं था, लेकिन वो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ी हस्ती थे। मैं उनके घर पे भी गया और उनके बारे में जाना, तो मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ कि मैं झांसी का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हूँ।
0: करमवीर जी, मेजर ध्यानचंद की विरासत को ये स्टेडियम किस तरह सहेज रहा है और यहाँ अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है?
1: मेजर ध्यानचंद की विरासत में यहाँ पे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिया है। मेजर ध्यानचंद जी से प्रभावित होकर यहाँ खेल विभाग ने हॉकी का हॉस्टल भी दिया है और यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ भी बना है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के मैचेस हुए हैं, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, जिससे कि यहाँ के हॉकी खिलाड़ियों को बहुत सुविधाएं मिली हैं।
0: जी करमवीर जी, झांसी और पूरे मंडल यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए इस समय स्टेडियम में कौन कौन से खेलों के हॉस्टल, सिंथेटिक टर्फ और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं?
1: हमारे स्पोर्ट स्टेडियम में हॉकी और बॉक्सिंग का छात्रावास है और यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ है हॉकी का। बॉक्सिंग के छात्रावास के बच्चों के लिए हॉल बना है जिसमें रिंग पड़ा है, राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप है। यहाँ पे क्रिकेट और वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, जिम्नास्टिक्स, अन्य खेल यहाँ पे संचालित किए जाते हैं।
0: जी करमवीर जी, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए योग्य प्रशिक्षकों की क्या व्यवस्था है और नई खेल प्रतिभाओं के लिए प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी कुछ बताएं।
1: हमारे यहाँ जितने भी स्टेडियम है हर जगह योग प्रशिक्षक रखे जाते हैं, जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा डिप्लोमा प्राप्त करके ही वो खेल विभाग में एज ए कोच ज्वाइन करते हैं।
0: जी।
1: नए बच्चे जो आते हैं उनके लिए हॉस्टल्स के लिए जिला और मंडल स्तर पर ट्रायल करके ही खेल के छात्रावास में उनका चयन किया जाता है। और ऐसे भी बच्चे जो स्थानीय बच्चे जो हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं वो स्टेडियम आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा के सुबह शाम अपना प्रशिक्षण लेते हैं कोचों द्वारा।
0: जी करमवीर जी, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक खेल योजना और नई खेल नीति का प्रभाव झांसी स्टेडियम में किस प्रकार देखने को मिल रहा है?
1: जो नई खेल नीति खेल विभाग द्वारा लाई गई है उससे सभी स्टेडियम और जिलों में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। सभी खेल गतिविधियां अच्छे संचालित हो रही हैं। हमारे यहाँ एक जिला एक खेल के तहत हॉकी खेल का प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें 30 बच्चे, 15 बालिका, 15 बालक हॉकी खेल का प्रशिक्षण लेते हैं। इनका प्रशिक्षक सुषमा जी हैं जो खेलो इंडिया की कोच हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं।
0: जी सर, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों से आने वाली खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें मुख्य धारा के खेल केंद्रों तक लाने के लिए विभाग क्या विशेष प्रयास कर रहा है?
1: विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं

0: का आयोजन किया जाता है, जो ग्रामीण स्तर से बच्चे आते हैं उसमें बच्चों को देखा जाता है कौन बच्चे कितना प्रतिभाशाली है। उनको खेल विभाग, अभी डीएम सर के द्वारा एक नई योजना चलाई गई है जो स्कॉलरशिप योजना है, जो 10 वर्ष से 14 वर्ष, 14 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। उसके लिए हम ट्रायल करेंगे, विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उसमें बच्चों को हम छांटेंगे कौन प्रतिभावान खिलाड़ी है, उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा।
1: सर, हाल के दिनों में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से निकले किन खिलाड़ियों ने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर झांसी और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है?
0: मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बहुत से बच्चों ने, छात्रावास से बहुत बच्चे यहां से निकले हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभा किए हैं। अभी झांसी का ही रहने वाला बच्चा है जो हमारे लखनऊ के छात्रावास में है, वो अभी जूनियर सब जूनियर एशिया कप का गोल्ड मेडलिस्ट और कप्तान भी रहा है, उसका नाम केतन कुशवाहा है
1: जी। और सर, आने वाले समय में स्टेडियम के नवीनीकरण, नए इंफ्रास्ट्रक्चर या नए खेलों के प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर विभाग की क्या योजनाएं हैं?
0: यहाँ पे जितने खेल सुविधाएं उनके सभी प्रशिक्षक हैं और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं खेल निदेशालय से कि एथलेटिक्स और स्विमिंग, कबड्डी, ताइक्वांडो, जूडो जैसे प्रशिक्षकों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाए। बाकी नवीनीकरण के लिए अभी हमारा 6 करोड़ का प्रस्ताव गया है, लगभग वो भी पास हो जाएगा, तो बाकी जो स्विमिंग पूल हमारा जर्जर स्थान में है वो अच्छा हो जाएगा
1: जी। और सर, आजकल जब बच्चे और युवा डिजिटल स्क्रीन की तरफ अधिक आकर्षित हो रहे हैं तो खेल दर्पण के माध्यम से आप बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उनके अभिभावकों को खेलों से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: खेलों से जुड़ने के लिए हमें कहेंगे कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो अच्छी जानकारी भी देती है और उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन खेलों के क्षेत्र में मोबाइल से दूर ही होना पड़ेगा। सुबह शाम ग्राउंड में आना पड़ेगा, बिना ग्राउंड में आए आप खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं और मोबाइल आपको अस्वस्थ बनाएगा। आप ग्राउंड में आएंगे तो एक स्वस्थ रहेंगे और अपने खेल के प्रति आपका झुकाव रहेगा, तो उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रतिभा करके अपने देश प्रदेश गाँव का नाम रोशन करेंगे
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर जी, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप हमारे युवाओं को, युवा प्रतिभा जो आगे आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: युवा प्रतिभा का यही कहना है कि वो प्रतिदिन अपना टाइम सुबह शाम खेल पे दें, चाहे जहां भी ग्राउंड हो, ग्रामीण स्तर या कॉलेज में या स्कूल्स में। सबसे ज्यादा मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, में सभी जगह जो खेल मैदान है सभी बच्चे 1 घंटे प्रैक्टिस करें, किसी न किसी खेल से जुड़ें, और अगर उनके पास वहां सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो हमारे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आएं, यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो हमारे खेल यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लाभ उठाएं और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। जय हिंद।
1: धन्यवाद सर। इसके बाद हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा विभाग में, जहां हमने बातचीत की विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव पवेले से। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय कैंपस में वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से मुख्य खेलों के आधुनिक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम ग्राउंड उपलब्ध हैं?
2: हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा बैडमिंटन कोर्ट है हमारे पास, वुडन कोर्ट है हमारे पास 4, तो इंडोर के लिए है वो। इनके अलावा इंडोर बास्केटबॉल भी हमारे पास है, कोर्ट बना उसका बना हुआ है, उसमें भी बच्चे खेल सकते हैं। हैंडबॉल भी है हमारे पास इंडोर, वो भी सुविधा हमारे पास है। आउटडोर में जब हम जाते हैं तो आउटडोर में भी हमारे पास बास्केटबॉल का है, फुटबॉल मैदान है हमारे पास, क्रिकेट मैदान भी हमारे पास है। इनके अलावा जो कोर्ट वाले गेम हमारे वॉलीबॉल है, जैसे खो खो है, कबड्डी भी इंडोर में भी है, आउटडोर में भी है, दोनों जगह हमारे पास कबड्डी है। बाहर मलखम भी हमारे पास है
1: जी।
2: जो मलखम बच्चे करते हैं हमारे पास और उनकी प्लेस भी कहीं ना कहीं लगी हुई है, खेलो इंडिया में भी बच्चे गए हैं
1: जी। राजीव जी, आने वाले समय में विश्वविद्यालय में खेल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए क्या योजनाएं हैं?
2: सरकार की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनसे कि विश्वविद्यालय खिलाड़ियों का कहीं अपग्रेड होंगे बच्चे, जैसे सिंथेटिक ट्रैक की बात हमारे चल रही है विश्वविद्यालय में, वो सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जा रहा है, पवेलियन का निर्माण भी इस समय चल रहा है, लॉन्ग टेनिस कोर्ट भी हमारा तैयार है इस समय, और इनके अलावा छोटे छोटे कोर्ट के रूप में बनाए जा रहे हैं, और स्विमिंग पूल का भी प्रपोजल हमने इस समय दे रखा है और बहुत जल्दी शायद पास होने के बाद सरकार से स्विमिंग पूल का निर्माण भी यहाँ शुरुआत हो जाएगी
1: जी। और राजीव जी, एथलीट्स के अभ्यास के लिए उच्च स्तरीय उपकरण और विशेषज्ञ प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है?
2: हमारा जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर दो दो कोचेस ऐसे हैं, दो टीचर हैं जिनका मेजर गेम एथलेटिक्स ही है, और वो एथलेटिक्स में बच्चों को ट्रेंड भी करते हैं, और इनकी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जितना अच्छा हो जाएगा एथलेटिक्स के लिए हम प्रयासरत
1: जी। राजीव जी, हाल के वर्षों में

0: ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन कैसा रहा है?
1: हमने कुछ खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे मलखम है, तो मलखम में खेलो इंडिया में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, कहीं ना कहीं मेडल भी उनका रहा है
0: जी।
1: दूसरा इसके अलावा और भी जो गेम है हमारे उनमें भी अपग्रेड हुए हैं, थर्ड से फोर्थ स्टेज तक हम गए हैं खेलते हुए, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, क्रिकेट में भी आगे चल के हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और अंतिम चार में स्थान भी बनाया है कुछ समय पहले हमने।
0: जी जी राजीव जी, विश्वविद्यालय द्वारा अन्य राज्यों या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी की क्या भावी योजनाएं हैं?
1: हमारे यहाँ पर जो भी खेल हमें विश्वविद्यालय को दिए जाते हैं AIU के द्वारा या उसके द्वारा, तो हमारे जो स्पोर्ट ऑफिसर हैं उस चीज को कंडक्ट करते हैं
0: जी।
1: और उन्होंने इसके पहले भी प्रतियोगिताएं कुछ कराई हैं, जैसे महिला क्रिकेट इंटरनेशनल उन्होंने कराया है
0: जी।
1: और आगे भी प्रयासरत रहते हैं, वो कराते हैं इस चीज को।
0: तो राजीव जी ये बताइए, यहाँ पे बच्चों के जो प्रैक्टिस करने का जो समय सारणी है या फिर उनके लिए जो हॉस्टल है, बाहर से भी बच्चे यहाँ जो रह रहे हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं गेम्स की यहाँ पर?
1: हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से भी बच्चे हैं
0: जी।
1: जैसे हमारा डिपार्टमेंट है फिजिकल डिपार्टमेंट है, इसमें बच्चा जो आता है स्पोर्ट्स से ही रिलेटिव आता है
0: जी।
1: और उसका कोई ना कोई मेजर गेम रहता ही रहता है, अगर उसका क्रिकेट होगा तो वो क्रिकेट में बहुत अच्छा प्लेयर होगा, लगभग नेशनल लेवल से ही बच्चे आते हैं इसमें अधिकांश, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। लेकिन इनके अलावा भी और डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट से ही बच्चे आते हैं जो अच्छे प्लेयर होते हैं और जब सिलेक्शन होता है तो वो यूनिवर्सिटी के कहलाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं।
0: राजीव जी, छात्राओं की खेल में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या विशेष प्रयास या सुविधाएं दी जा रही हैं?
1: हम लोग छात्राओं के विभिन्न टूर्नामेंट कराते हैं, उन टूर्नामेंट के माध्यम से छात्राओं में कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ रहा है और छात्राएं निकल के आ रही हैं। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुलिस में कोटा कर रखा है स्पोर्ट खिलाड़ियों के लिए
0: जी।
1: वो भी एक लाभदायक है, सरकार की जो पॉलिसी आई है उससे भी एक रुझान बढ़ा है छात्रों और छात्राओं दोनों में
0: जी।
1: खेलों के प्रति
0: जी।
1: कि अगर इसमें मेडल हमारा आ जाता है तो हम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं
0: जी। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो छात्र स्पोर्ट कोर्स जैसे BPED MPED आदि कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑन फील्ड एक्सपीरियंस के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई?
1: हमारे यहाँ जो एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरी पार्ट होता है एक प्रैक्टिकल पार्ट
0: जी।
1: प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारा है वो बच्चों के लिए कंपलसरी है, उसमें सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर अलग अलग खेलों के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है
0: जी।
1: और उन्हें उन खेलों की बारीकियां सिखाई जाती हैं जिससे वो आगे जाके अगर अपना किसी कॉलेज में जाते हैं कहीं जाते हैं तो बच्चों को ट्रेन कर सके
0: जी।
1: तो ये प्रैक्टिकल उन्हें कराया जाता है, प्रैक्टिकल कंपलसरी है हमारे यहाँ
0: जी। जी, प्रैक्टिकल करा के नहीं, पूर्ण शिक्षक के रूप में तैयार
1: पूरी तरीके से हम लोग
0: जी। तो अंत में आप युवा जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश तो यही है हमारा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आइए, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका स्वागत करता है। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई कोर्सेज ऐसे हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, वो कोर्स करने के बाद आगे स्पोर्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर इस लाइन में वो जा सकते हैं, कोचेस की लाइन में भी जा सकते हैं, तो विश्वविद्यालय में सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, यहाँ तक कि आप रिसर्च के माध्यम से PhD भी आप कर सकते हैं और डॉक्टर आपके नाम के आगे लग सकता है
0: जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इसके बाद हमने बात की बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विनोद कुमार बौद्ध जी से। आपने हमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की खेल गतिविधियों और उनकी उपलब्धियों की जानकारी से अवगत कराया। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय के कौन कौन से छात्र छात्राएं और किस किस खेल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
2: धन्यवाद सर। जैसा कि आपने पूछा, इसमें जो मेजर ध्यानचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो छात्र हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रमुखता से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे यहाँ से छात्र जाते हैं पार्टिसिपेट होके, और खेलो इंडिया, इनमें मेजर ध्यानचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 3 छात्र हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में 2 छात्रों का गोल्ड मेडल है। नॉर्थ जोन एंड इंटरवर्सिटी पार्टिसिपेशन कई छात्रों का है, जिसमें मेरी ख्याल से मैं जानता हूं कि हर क्लास से हमारे यहाँ BPES है, BPED है और इस समय लेटेस्ट में PGDYSC शुरू हुआ है और MPES है। प्रत्येक क्लास से प्रति वर्ष कम से कम 5 से 7 छात्र छात्राएं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें से 1-2% तो मेडल लाते ही लाते हैं, ठीक है। जिनमें स्टेट लेवल पर तो कई ऐसे छात्र हैं जिनके गोल्ड मेडल और मेडल हैं। इनमें 17 छात्र ऐसे हैं छात्र मिला के जिनके 17 छात्रों में गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, ठीक है। बाकी प्रत्येक वर्ष पार्टिसिपेशन सबके ही मिलेंगे।

0: छात्रों के, क्योंकि हमारे यहाँ बीपीएड में एलिजिबिलिटी ही है कि छात्रों के पास स्टेट नेशनल पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल तो कंपलसरी है ही। तो ऐसे छात्र हमारे जो मिलेंगे जो प्लेयर भी हैं और साथ में पढ़ाई भी कर।
1: तो विनोद जी, आप इन सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या मोटिवेशन देते हैं?
0: हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राजीव बवेरे जी सभी टीचर को मोटिवेट किए रहते हैं कि अपने छात्रों को हमेशा बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और हम लोग भी जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर, हम लोग 13 शिक्षक हैं, तो 13 के 13 जितने भी अपने अपने गेमों में मास्टर्स हैं और सभी लोग पढ़ाने के साथ साथ स्पेशलाइजेशन, सबके सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है और गेमों में भी स्पेशलाइजेशन है। तो प्रत्येक जो गेमों में जिन जिन के स्पेशलाइजेशन है, हम लोगों की क्लासेस होती है मॉर्निंग में, उन क्लासेस में बच्चों को प्रॉपर स्किल सिखाई जाती है और जब वो स्किल सीखते हैं तो उनको पार्टिसिपेशन के लिए हमेशा बोलते हैं कि आप इनमें पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी जैसे AIU का एक कैलेंडर जारी होता है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हमारे छात्र पार्टिसिपेट करते
1: हैं। और अंत में आप हमारे सभी युवा जो प्रतिभागी हैं, युवा हैं आज की पीढ़ी, उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं तो यही कहूंगा कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होलसम डेवलपमेंट करता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, और प्रेजेंट में तो आर्थिक रूप से भी। तो सभी छात्र छात्राओं से यही बोलूंगा कि एक तो बीपीएड करें, बीपीएस करें, एमपीएस करें, फिजिकल एजुकेशन के सभी कोर्सों में साथ दें और साथ में अच्छा खेलें, अच्छा खाएं और फिर स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें,
1: देश का नाम रोशन
0: करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सर।
1: तत्पश्चात हमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से उनके खेल और उनकी उपलब्धियों से संबंधित बातचीत की। आइए सुनते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की बातचीत।
2: मेरा नाम अंशिका बिश्नोई है और मैं मुरादाबाद से हूँ। मेरा डिसिप्लिन 10 मीटर एयर राइफल है, एयर राइफल शूटिंग, और उसके साथ साथ मैं 50 मीटर .22 भी खेलती हूँ। अभी मैं सर नेशनल खेल चुकी हूँ और इंडिया टीम के ट्रायल्स में हूँ। मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग है वो सन 2016 में हुई थी मेरे स्कूल से। वहाँ पे मैंने स्टेट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड अनदर ब्रॉन्ज, आफ्टर दैट आई प्लेड SGFI, उसके बाद में फिर मैंने ओपन खेलना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने स्टेट में पार्टिसिपेट करते हुए अभी तक 9 ओपन नेशनल खेले हैं और आफ्टर 12th मेरी स्टडी में एक साल का गैप भी रहा है। उसके बाद में मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मैंने अभी तक सर 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले।
1: तो हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं, उनको जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं आपके इस गेम में, तो उन्हें क्या आप सुझाव देना चाहेंगी कि क्या क्या वो करें इसके लिए?
2: जो शूटिंग गेम है वो टोटली डिपेंड्स ऑन माइंड, ये पूरा टेक्निकल गेम है। मैं यही उन लोगों से कहना चाहूंगी जो भी इस गेम में इंटरेस्टेड है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। जब हम इसको खेलने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारा फोकस डेवलप होता है। और अगर हम टेक्निकली जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो सीखते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।
3: नमस्ते जी, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मलखम में हमारे गांव से मैंने शुरू किया था सीखना और मलखम में मैंने नेशनल खेले हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 3 बार खेली है। खो खो में मैंने नॉर्थ जोन खेले हैं 2 बार। ये पारंपरिक खेल है, इसके थ्रू मैंने जॉब भी की है। उसके बाद अब मैं BPED कर रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से, और मेरे नेशनल है उज्जैन में, कई नेशनल गोवा में भी और पूना में भी है। मलखम एक पारंपरिक खेल है जिसकी शुरुआत भारती में हुई है। मलखम एक ऐसा खेल होता है जो जैसे योग होता है, योग हम जमीन पे करते हैं, धरती पे बैठ के करते हैं, लेकिन जो आसन होते हैं वो हमें एक लकड़ी के ऊपर करने पड़ते हैं, वो पोल मलखम होता है। रोम मलखम होता है, उसमें रस्सी के ऊपर आसन करने पड़ते हैं। इसी तरह एक हैंग मलखम होता है, तो वो एक लटके हुए मलखम पे आसन करने होते हैं। इसमें जो योगा के आसन होते हैं जमीन पे, वैसे आसन हमें ऊपर करने पड़ते हैं, जैसे शीर्षासन आदि है या तीरासन आसन है, वो सारे हमें मलखम पे करने होते हैं। इससे शरीर बड़ा सुडोल और फ्लेक्सिबल बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमित
3: जी। धन्यवाद।
4: हेलो सर, मेरा नाम श्रद्धा अहिरवार है और मैं एक बॉक्सिंग प्लेयर हूँ। मेरा गेम 2020 से शुरू किया था मैंने, जो कि मेरे एक कोच हैं जिनका नाम कल्लू बॉक्सर बुलाते हैं, उनसे मेरा गेम का ट्रेनिंग शुरू हुआ। उन्होंने मुझे एक साल तक ट्रेनिंग दी, उसके बाद मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया, फिर वहां मैंने उसके कुछ दिन ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैं स्टेट खेलने गई और स्टेट में मेरा गोल्ड था। फिर मैं नेशनल में पार्टिसिपेंट हूँ और मेरा 3 टाइम गोल्ड मेडल है स्टेट में, और 2 बार पार्टिसिपेट है नेशनल में और 2 बार

0: पार्टिसिपेट है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, और अभी रिसेंट में 2024 में मैंने सीनियर स्टेट खेला था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था।
1: तो श्रद्धा, हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे अपने खेल से संबंधित?
0: यही कहना चाहूंगी कि सबको गेम खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपकी बॉडी भी फिट रहती है। और खासकर लड़कियों को मैं बोलूंगी जरूर कि वो बॉक्सिंग ज्वाइन करें और अपने सेल्फ डिफेंस भी अच्छा करें और अपने दिमाग को और शरीर को विकसित करें और थोड़ा मजबूत बने मानसिकता और शारीरिक तौर से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा आपका।
2: जय हिंद सर, माय नेम इज प्राची यादव और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मेजर ध्यानचंद इंस्टीट्यूट की BPR थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा मेजर गेम तो बैडमिंटन है, बट फ्रॉम द लास्ट वन ईयर मैं योगासना की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने इस साल योगासना में 60th यूपी स्टेट और वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन का स्टेट योगासना में खेला था जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था।
1: वेरी गुड, तो कुछ योगासन के बारे में बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: हाँ, योगासना वैसे तो इंडिया का एक बहुत पुराना कल्चर है योगासना, जो कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को परफॉर्म करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली और सोशली भी इंसान को काफी हेल्प करता है।
1: तो ये खेल में किस तरह से मदद करता है योगासन?
2: जैसे कि हमें पता है कि खेल के दौरान हमें काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो योगासना एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। जो गेम के दौरान एंजाइटी होती है उसमें भी काफी हेल्प करता है और काफी कॉन्फिडेंटली हमें स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने में हेल्प करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू सो मच सर।
3: मेरा नाम कपिल यादव है और सर मैं मेजर ध्यानचंद इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन में सर BPEd सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, और मेरा मेजर गेम है रेसलिंग कुश्ती, और सर मैं 3 बार इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन पार्टिसिपेट है सर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल, और सर स्टेट 2 टाइम चैंपियन, अभी सर रिसेंटली सीनियर में 74 kg में सर अभी गोल्ड आया था मेरा स्टेट में।
1: तो इसमें डाइट के बारे में बताइए, कितना कुछ वजन का भी ध्यान रखना पड़ता है, कि किसी कैटेगरी में खेलते हैं आप?
3: जी सर, इसमें कैटेगरियां होती है सर, इसमें वजन का मतलब खास ध्यान रखा जाता है, अगर थोड़ा भी अगर ज्यादा हो जाता है सर तो सर ऐसे ही सर वजन का तो इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: तो क्या दिनचर्या रहती है आपकी, कितने बजे उठते हैं?
3: सर सुबह वही सर 4:30-5 बजे तक उठना होता है, उसके बाद सर रनिंग वगैरह रहती है, उसके बाद अखाड़े पे मेहनत करते हैं वो वर्कआउट पूरा, उसके बाद शाम को सर प्रैक्टिस मतलब साथ में जो जोड़ वगैरह रहते हैं
1: जी
3: वो सब करना पड़ता है।
1: तो आपके लिए कौन आइडल हैं आपके इसके कुश्ती के?
3: सर आइडल तो सर मैं सुशील कुमार पहलवान जी को मानता हूँ, जो सर ओलंपिक में सर जिनका सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है।
1: चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी।

0: श्रोताओं, खेल सिर्फ मनोरंजन या सेहत बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सपनों को नई उड़ान देने वाला एक ऐसा विस्तृत आसमान बन चुका है जहां संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आज खेल का मैदान सिर्फ मेडल तक सीमित नहीं है, ये एक उज्ज्वल करियर, आर्थिक स्वावलंबन और वैश्विक पहचान का सशक्त माध्यम बन चुका है। आज खेलों के क्षेत्र में युवाओं के लिए अनगिनत रास्ते खुल रहे हैं। हमारे राज्य की खेल नीतियाँ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव की प्रतिभाओं को तराशकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो मैदानों में उतरकर अपनी तकदीर बनाते हैं, वो हर एक चुनौती को अपनी ताकत बनाते हैं। खेल सिर्फ हुनर नहीं, अब सुनहरा भविष्य भी है। तो श्रोताओं, ये था आज का खेल दर्पण कार्यक्रम। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि खेल सिर्फ समय बिताने का साधन या एक मुकाबला भर नहीं है। खेल हमारे जीवन का अनुशासन है, हमारी सेहत की चाबी है और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा उस्ताद है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आकाशवाणी झांसी पर तैयार किया गया। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग था दीपक शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। तो श्रोताओं, रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी झांसी की थी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

कश्मीर की गली। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत एसएच बिहारी का था और संगीत ओपी नैयर का। आइए अब सुनते हैं

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म सावन की घटा में। गीत को लिखा था एसएच बिहारी ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आराधना में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत एसडी परमन का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफर का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

इस गीत के साथ ही आपकी बात कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही

FM 107 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।